0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: वैसे आपके अंजर पंजर सारे ठीक चल रहे हैं, बैक इज फाइन, जॉइंट्स आर फाइन, लेकिन डॉक्टर हॉट है, इसलिए आप हर हफ्ते डॉक्टर के पास नई परेशानी लेकर पहुंच जाते हो. सो नॉट इफ यू
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई भी भसर टाइप कन्फेशन है, हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक, वी विल टॉक अबाउट इट. मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशनी,
1: हाउ आर यू?
3: I'm good. How are you?
1: I'm good. मैंने आपका कन्फेशन जब पढ़ा, आई वॉज फीलिंग वेरी बैड फॉर योर डैड एक्चुअली. तो एक्चुअली स्टोरी है क्या?
3: तो द थिंग इज, मेरा एक एक्स है और हमारा बहुत ऑन एंड ऑफ का रिलेशनशिप रहा था इन द पास्ट. एंड मेरा बर्थडे था एंड आई वेंट ऑन अ डिनर विद ऑल माई फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ही शोड अप ड्रंक एंड क्रैश्ड माई पार्टी. एंड उसके बाद ही हैड द ऑडेसिटी टू फॉलो माई डैड इन टू द मेन्स वॉशरूम एंड बेग्ड हिम कि मैं उससे पैच अप कर लूँ.
1: दिस इज सो वियर्ड. One second, I can just picture this. आपके डैड वॉशरूम में है, he is doing his business, और सडनली साथ में एक बंदा के खड़ा होकर कहता है, hey, what's up, dog? And your dad is like, हाँ बेटा बोलो.
3: What's up, dog? नहीं रोशी, he greeted him, नमस्ते अंकल, पैर छुए, and like he was like, my dad was traumatized. उन्होंने मुझे एक हफ्ते बाद बताया.
1: वॉशरूम में उसने आपके पापा के पैर छुए? वॉशरूम में?
3: हाँ.
1: I hope you did not go back to
3: running joke in the family.
1: Oh God! Please tell me you did not go back to this guy.
3: No, I haven't.
1: ये रोशिफिकेशन आपके लिए कम और आपके पापा के लिए ज्यादा है, ठीक है?
3: Thank you so much.
1: There you go.
4: You've been roshified.
1: You poor thing. Next time you actually end up in a relationship with someone, make sure कि उसे आपके पापा और मम्मी के पास access zero हो. ऑल द बेस्ट टू यू. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी कोई कन्फेशन है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, आई बी सो हैप्पी टू टॉक टू यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. डू वट एवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: Tera kya hoga, Kalia?
6: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
5: Ab, mirchi kha.
7: Radio Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Mirchi, fresh maal.
2: जब हर बीट में हो तड़का, तब बनती है चटनी.

गाने को आवाज दी है नील कमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नील कमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी

0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
3: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ये सारी दुनिया एट दिस पॉइंट इन टाइम, ओके चल सारी दुनिया नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ इंडिया इस सारे टाइम प्यार में और बारिश दोनों में भीगी हुई है. द अदर डे आई वाज कमिंग टू वर्क और मैंने इसे देखा साइड में ना पेवमेंट पर एक कपल बैठा हुआ था, बारिश एंजॉय कर रहे थे दोनों, समोसा खा रहे थे और लड़के के हाथ में छतरी थी, एक्सेप्ट उसकी छतरी थोड़ी सी लेफ्ट साइड को टिल्ट कर रही थी ताकि उसके साथ जो लड़की बैठी है वो भीग ना जाए. सो वाइल उस लड़के का एक साइड का कंधा भीगे जा रहा था, He didn't really care. और वो लड़की उससे बातें करती जा रही है, समोसे खा रही है, एक पीस जलेबी खा रही है. She had no realization कि कैसे उस लड़के ने अपनी छतरी को उस तरह से टिल्ट किया है कि वो भीग जाए भले, लेकिन वो लड़की ना भीगे. And that I think, you know, बारिशों में ना प्यार के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं. And I think ऐसा सीजनल नहीं है प्यार, कभी भी कहीं भी हो सकता है. बट जितना गौर से मैंने प्यार लोगों के बीच में बिल्ड होते, ब्लॉसम होते देखा है ना इन द मॉनसून का सीजन, वो मैंने शायद कभी भी नहीं देखा. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है दैट यू हैव फॉलन इन लव ड्यूरिंग द मॉनसून? अगर हाँ, देन वाई डोंट यू हिट मी अप एंड टेल मी ऑल अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: स्कूल में आई स्वेयर मैंने एक भी केमिस्ट्री की क्लास मिस नहीं की, लेकिन स्कूल की केमिस्ट्री जो मुझे नहीं सिखा पाई वो मुझे जिंदगी ने सिखा दिया कि दो लोगों के बीच में या तो केमिस्ट्री होती है या नहीं होती है। सिंपल सी बात है। आई गेस वी हैव टू गो बैक टू दैट पुराना शेर कि इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। अब अगर आपका किसी के साथ केमिस्ट्री वाला सिचुएशन है, आप लाख कोशिश कर लो, यू वोंट बी एबल टू कीप इट डाउन। और अगर केमिस्ट्री नहीं है तो वेल, नो वाइब इज नो वाइब। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यस्टरडे आई वेंट आउट टू अ पार्टी विद लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स और उसमें एक बंदा है, हम दोनों की ना वाइब बहुत लाइक सॉर्टेड है। और ऐसे नहीं है दैट वी आर इंटरेस्टेड इन ईच अदर बिकॉज मैं सिंगल हूँ एंड ही इज डेटिंग समबडी एल्स, बट क्योंकि हमारी केमिस्ट्री है तो हमारी केमिस्ट्री है, सबको दिखाई देती है, नो वन टॉक्स अबाउट इट एंड आई ऑल्सो कीप क्वाइट बिकॉज किसी और के बंदे में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। दैट्स अगेंस्ट माई मॉरल कंपस। आपका मॉरल कंपस कहाँ सिचुएटेड है? Why don't you tell me about it? And if you want to be my mystery caller, मैं आपका नाम भी नहीं बताऊंगी किसी को। मेरा नाम on the other hand है मिर्ची रोशी, नाम के spelling है R-O-C-H-I-E. So now find me on the gram या Facebook and whatever you do, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
1: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
0: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
2: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: नए रिलेशनशिप के पहले ही कुछ महीनों में यू शुड फिगर आउट कि आपके फ्यूचर के प्लान्स एक जैसे हैं या नहीं. सोचो, एक इंसान ये सोच रहा है कि एक साल में शादी कर लेंगे, दूसरा इंसान ये सोच रहा है कि ये एक सिचुएशनशिप है. अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स एंड योर कोट एंड कोट पार्टनर इज थिंकिंग समथिंग एल्स, व्हाई डोंट यू सेंड मी योर नंबर इंस्टा पर या FB पर एंड लेट्स गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर वेदांत है. हाय वेदांत.
2: हाय,
1: हाउ आर यू?
2: I am fine. I can't believe.
1: हम बोल रहे हैं गर्लफ्रेंड है तेरी?
2: मतलब एक्साइटमेंट नहीं है.
1: क्यों एक्साइटमेंट नहीं है? तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? क्यों, क्या हो गया?
2: गर्लफ्रेंड है लखनऊ में अभी.
1: तो इसका ये मतलब थोड़ी कि
2: दूसरे लड़के के साथ.
1: ये कब हुआ?
2: ये हो गया मैम, लॉन्ग स्टोरी.
1: तो अब?
2: अब कुछ नहीं, अभी चल रहा है.
1: कब से हुआ तेरा ब्रेकअप?
2: हो गया मैम एक डेढ़ साल.
1: एक डेढ़ साल? एक डेढ़ साल ज्यादा टाइम नहीं होता टू मूव ऑन इन लाइफ एंड टू फाइनली गेट अनदर प्रॉपर गर्लफ्रेंड?
2: नहीं मैं वो ट्राई किया, पर क्या पता.
1: मतलब कहाँ, कैसे ट्राई किया, चल बता मुझे.
2: मतलब मूव ऑन करने का, भूलने का भी वो ट्राई किया मैं, विदाउट कॉन्टेक्ट भी रहने का ट्राई किया. बट एट द एंड एक टाइम पे वो लड़की स्टक ही होती थी माइंड पे, नहीं आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रहा था. और अभी भी मतलब मैं ट्राई करता हूँ पर हो रहा नहीं है मेरे से.
1: तो डेढ़ साल हो गया और अभी भी तुझे उस लड़की से प्यार है, करेक्ट?
2: हाँ मैम.

0: एक
1: बट
0: स्वीटहार्ट,
1: इसको भी मुझे मेरे को 1,000 नहीं, इसको भी पता, अब तक मैं रुका हूँ, एक्सेप्ट करने को भी रेडी हूँ, बट नहीं।
0: यार अगर 1.5 साल से वो वापस नहीं आई है ना, द चांसेस आर दैट शी इज प्रोबेबली नॉट कमिंग बैक। दैट सेड, अगर तू आगे नहीं बढ़ेगा ना, तो ये तेरा पास्ट रिलेशनशिप तेरी प्रेजेंट लाइफ को कंज्यूम कर देगा, यू नो दैट राइट?
1: या मैम,
0: तो एक काम क्यों नहीं करता, डेटिंग ऐप डाउनलोड करेगा, एक
1: हाँ करूंगा, कर
0: करेगा, और जो भी डेटिंग ऐप डाउनलोड करेगा उसमें अपनी बेस्ट फोटोज लगाएगा, प्रॉमिस।
1: प्रॉमिस।
0: अगर कोई लड़की जब तुझे राइट स्वाइप करके बात करने की कोशिश करेगी, खुले दिल से तू उससे बात करेगा, ठीक है?
1: चलेगा चलेगा मैम,
0: हाँ,
1: फॉर श्योर।
0: और पहले एक दो कॉन्वर्सेशंस में, जो टेक्स्ट की कॉन्वर्सेशंस है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कोई मेंशन नहीं करना है, ठीक है?
1: यस
0: ओके, बिकॉज गर्ल्स के साथ जब आप पहली बार बात कर रहे होते हो, दे डोंट वॉन्ट टू नो अबाउट योर पास्ट सो अर्ली ऑन इन टू अ कॉन्वर्सेशन। ओके,
1: ओके मैम, फॉर श्योर, थैंक्स।
0: आप ये करोगे और फिर मुझे बताओगे कि आपको डेट मिली कि नहीं, हाँ कि नहीं, प्रॉमिस?
1: पक्का पक्का पक्का मैम, पक्का
0: आप मुझसे तो
1: पक्का,
0: प्यार
1: यस
0: करते
1: मैम।
0: हो ना
1: हाँ मैम, बहुत प्यार करता हूँ।
0: तो मेरे प्यार में आपको ये करना पड़ेगा, वी विल मूव ऑन टुगेदर, ठीक है? आप अकेले नहीं हो
1: यस
0: इसमें,
1: मैम, फॉर श्योर, फॉर
0: आई
1: श्योर,
0: लव यू यार। अच्छा अब ठीक है,
1: लव
0: फोन
1: यू
0: रख
1: टू।
0: और डेटिंग ऐप डाउनलोड कर अभी।
1: ओके मैम, ओके। और इंस्टा पे आप रिप्लाई करोगे ना मैम?
0: हाँ रिप्लाई करूंगी, मुझे डेटिंग ऐप की फोटो भेज अपने।
1: ओके चलेगा,
0: आई
1: थैंक्स
0: लव
1: मैम, बाय,
0: यू। ओके
1: लव यू, लव यू।
0: बाय। अगर आपकी भी जिंदगी में वेदांत की तरह ऐसे ही यू आर नॉट बीइंग एबल टू मूव ऑन, शायद हम दोनों का प्यार, आपका और मेरा, इतना टाइट है दैट वी कैन एक्चुअली मेक इट वर्क फॉर यू। और वो करने के लिए एंड उसके बारे में पता करने के लिए, यू जस्ट हैव टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो व्हाट यू वेटिंग फॉर, हिट मी अप, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.

करे, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये ये ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे

क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी एक डम इंसान को डेट किया है? लाइक दैट पर्सन इज रियली नाइस, एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन इज सो सॉफ्ट एंड जेंटल एंड फ्रेजाइल की उम्दा, बिल्कुल ही चपली कबाब की तरह. लेकिन इनहेरेंटली वो इंसान इतना डम है कि उसके साथ एक इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन नहीं की जा सकती है. इन दैट केस, डू यू स्टे विद दैट पर्सन और डू यू डंप दैट पर्सन? इस सवाल का जवाब मेरे पास आज तक जिंदगी में नहीं आया है. आई डेटेड सम रियली स्मार्ट मैन हू've बीन लाइक नॉट एम्पथेटिक, एंड आई हैव ऑल्सो डेटेड सम वेरी जेंटलमैन जिनकी IQ 4 से ज्यादा नहीं है. और दोनों ही सूरतों में मुझे समझ नहीं आया कि मुझे एक इंसान से इन अ पार्टनरशिप क्या चाहिए, जेंटलनेस एंड कंपैशन या इंटेलेक्ट, क्योंकि आई डोंट थिंक आई कैन लिव विदाउट आइदर वन ऑफ द टू. और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसमें सरप्राइज सरप्राइज दोनों ही चीजें हैं, तो अब तक कहाँ थे तुम जाने मन, तुम्हारे इंतजार में तड़प तड़प के सूख गई हूँ मैं. हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड इफ यू आर समबडी हु इज एग्जैक्टली लाइक मी, स्ट्रगलिंग विद व्हाट टू डू विद योर पार्टनर, हिट मी अप नेवरटेलेस. उसके बारे में भी बात कर सकते हैं. दोनों ही सूरतों में ढूंढो मुझे ऑन द ग्राम या फेसबुक. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Honest confession time. मैं अपने एक एक्स के साथ अभी भी दोस्त हूँ एंड द रीजन वाई फ्रेंड्स इज नॉट बिकॉज वो अमेजिंग कंपनी है या वो किलर बातें करता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो बहुत ही उम्दा फोटोग्राफर है और मेरी फोटोज जैसी वो खींचता है कोई और नहीं खींच सकता. सो व्हाइल आई एम सिंगल आई फिगर्ड कि क्यों ना उससे दोस्ती मेंटेन करी जाए ताकि मेरी कम से कम अच्छी फोटोज तो आती रहे. यू कैन चेक देम आउट ऑल्सो ऑन इंस्टा या FB, दोनों जगह खुले आम पोस्ट किए हैं मैंने. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड व्हाइल यू आर सोशल मीडिया, मुझे ये बताओ कि आप अपने किस एक्स के साथ अभी भी दोस्त हो और क्यों. बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ रीजन डार्लिंग एंड व्हाइल यू टेल मी दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: वैसे आपके अंजर पंजर सारे ठीक चल रहे हैं, बैक इज फाइन, जॉइंट्स आर फाइन, लेकिन डॉक्टर हॉट है, इसलिए आप हर हफ्ते डॉक्टर के पास नई परेशानी लेकर पहुंच जाते हो. सो नॉटी इफ यू
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई भी भसर टाइप कन्फेशन है, हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक, वी विल टॉक अबाउट इट. मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी,
1: हाउ आर यू?
3: I'm good. How are you?
1: I'm good. मैंने आपका कन्फेशन जब पढ़ा, I was feeling very bad for your dad actually. तो एक्चुअली स्टोरी है क्या?
3: तो द थिंग इज, मेरा एक एक्स है और हमारा बहुत ऑन एंड ऑफ का रिलेशनशिप रहा था इन द पास्ट. एंड मेरा बर्थडे था एंड आई वेंट ऑन अ डिनर विद ऑल माय फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ही शोड अप ड्रंक एंड क्रैश्ड माय पार्टी. एंड उसके बाद ही हैड द ऑडेसिटी टू फॉलो माय डैड इनटू द मेंस वॉशरूम एंड बेग्ड हिम कि मैं उससे पैच अप कर लूं.
1: व्हाट? दिस इज सो वियर्ड. One second, I can just picture this. आपके डैड वॉशरूम में है, he is doing his business, और suddenly साथ में एक बंदा आके खड़ा होके कहता है, hey, what's up, dog? And your dad is like, हाँ बेटा बोलो.
3: What's up, dog? नहीं रोशी, he greeted him, नमस्ते अंकल, पैर छुए, and like he was like, my dad was traumatized. उन्होंने मुझे एक हफ्ते बाद बताया.
1: वॉशरूम में उसने आपके पापा के पैर छुए.

0: बजट। मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: लिसनर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

यू नो आई रियलाइज इन माई पर्सनल लाइफ की बहुत सारे लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं प्यार को टू बी लाइक अ शोपीस, कि एक बार मोहब्बत हो गई, आई लव यू कह दिया, उसके बाद जिंदगी में और भी गम है और भी काम है, तो हमारा जो रिलेशनशिप है उसे हम थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी देने लगते हैं. बट द ट्रूथ इज कि प्यार शोपीस नहीं होता. लव इन फैक्ट इज लॉट लाइक ए केक या अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. अगर आप उसे ज्यादा देर तक अनअटेंडेड रखो ना, तो उसमें फंगस लग जाती है. और प्यार बिल्कुल इसी तरह है. अगर आप प्यार में थोड़ा सा निग्लेक्ट आने दो और सामने वाले इंसान को प्रायोरिटी की लिस्ट में नीचे रखना शुरू कर दो, तो बिफोर यू नो इट उस रिलेशनशिप में इस तरह की दरारें आ जाती हैं जो फिर भरना बहुत मुश्किल है. Why am I telling you all of this? Because I have been in a position like that. सामने वाले इंसान ने पहले तो बहुत दींगे मार के कहा that I love you. एक बार I was in his life as his girlfriend. फिर वो ऑलमोस्ट मुझे भूल ही गया. और जब मुझसे बात करता था तो भी ही वॉज सो कंज्यूम्ड विद हिज ओन लाइफ कि मेरी जिंदगी के लिए उसके पास वक्त ही नहीं था. एंड बिफोर वी न्यू इट हमारी जिंदगी में इतनी जगह आ गई थी कि

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1.
3: Yaadein kabhi purani nahi hoti, sirf unhe yaad karne ki wajah badal jati hai. इसलिए कुछ गाने, कुछ फिल्में और कुछ आवाजें सालों बाद भी बिल्कुल वैसी ही महसूस होती हैं। हिट होना अलग बात है, याद रह जाना वो बहुत बड़ी बात है। और शायद इसलिए बॉलीवुड में सबसे मुश्किल काम ब्लॉकबस्टर बनाना नहीं, एक लेगेसी बनाना है। आज के काउंटडाउन में भी कुछ नए गाने होंगे, कुछ पुरानी यादें होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो शायद आप घर ले जाएंगे। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक / बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन। और शुरुआत कर रहा हूं विद द फर्स्ट सॉन्ग, जो है नंबर 20 की पोजीशन पर। मुझे लगा था शायद ये अलविदा कहने वाला है, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए थोड़ा और रुक गया है। द ग्रेटेस्ट लव सॉन्ग फ्रॉम लास्ट ईयर, दिस इज सैयारा
4: नंबर 20।

Cocktail 2 एक लंबी लिस्ट का हिस्सा बन गया है. Films that created some excitement at the start, लेकिन उसके बाद, well, they just exist. इनके बारे में हमें पता है, लेकिन इनके साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाया है. कभी कभी किसी फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी उसका ट्रेलर नहीं होती, उसका गायब हो जाना होती है. पिछले हफ्ते एक फिल्म ने पूरे देश को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया. सतलज रिलीज हुई, लोगों ने देखनी शुरू की और फिर रातों रात फिल्म हटा दी गई. एक वजह भी बताई गई पर वजह कन्विंसिंग नहीं थी. बहस शुरू हो गई लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रही, अगर कोई कहानी इतनी खतरनाक है कि उसे देखना ही नहीं चाहिए तो उसे हटा देने के बाद लोग उसे और ज्यादा क्यों ढूंढते हैं. शायद क्योंकि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जिस दरवाजे पर नो एंट्री लिखा हो सबसे पहले वही दरवाजा खोलने का मन करता है. और इंटरनेट के जमाने में एक बार कोई चीज दुनिया के सामने आ गई, उसे मिटाना शायद उसे और ज्यादा फैला देने जैसा होता है. नंबर 18 पर इस हफ्ते है तू ही दिसदा भूत बंगला से, एंड देन एक ऐसी फिल्म जिसने किसी कंट्रोवर्सी से नहीं सिर्फ लोगों की मोहब्बत से अपनी जगह बनाई है. दिलजीत दोसांझ सतलज में भी हैं और इस फिल्म में भी हैं. तो मैं वापस आऊंगा. और नंबर 17 दिस इज मस्कारा. नंबर 17

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
4: Number 16.

या इट्स फिक्शन, बट बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को सच्ची कहानियां पसंद बड़ी हैं, व्हिच इज व्हाई वी लव आवर बायोपिक्स। एंड एक और बायोपिक देखने के लिए अब जनता उत्सुक है, सौरव गांगुली की बायोपिक दादा, क्योंकि इस हफ्ते उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक आ गया है। एंड मैं शायद माइनॉरिटी में हूं, लेकिन मुझे क्रिकेट बायोपिक्स का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड लगता है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है ये लड़का? वेल, क्योंकि कुछ जिंदगियां एक फिल्म में नहीं समा पाती। सोचिए, सौरव गांगुली लॉर्ड्स में एक डेब्यू सेंचुरी, मैच फिक्सिंग के बाद इंडियन क्रिकेट की कमान संभाली, देन 2002 में वो नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल, एंड देन आया उनका सबसे मुश्किल चैप्टर, ग्रेग चैपल एज द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। उस वक्त सौरव कप्तान थे, फिर टीम से बाहर हो गए और फिर एक कमबैक भी हुआ, एंड देन यू गॉट क्रिकेट के बाद की जिंदगी। सिर्फ यही कहानी सुनाने अगर बैठोगे तो 10 घंटे निकल जाएंगे। एंड सौरव गांगुली द क्रिकेटर तो एक तरफ है, इसके अलावा सौरव गांगुली द पर्सन, द ह्यूमन बीइंग भी तो दिखाओगे। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि क्रिकेट बायोपिक्स अक्सर स्कोर कार्ड दिखा देती हैं, क्रिकेटर को नहीं। इसलिए राजकुमार राव और विक्रमादित्य मोटवाने पर पूरा भरोसा होने के बाद भी मैं सौरव गांगुली की बायोपिक को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल हूं, क्योंकि कुछ कहानियां फिल्म नहीं वक्त मांगती है। सिर्फ एक एमएस धोनी की बायोपिक थी विच वर्क्ड फॉर सम रीजन, बट उसके अलावा 83, अजहर, ना नॉट सो मच। क्या नंबर 15 पर इस हफ्ते डेब्यू कर रहा है एक नया गाना मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर की आवाज में, पल पल जीना मुहाल, गाना याद है ना? वेल, ये गाना है क्यों फ्रॉम वेलकम टू द जंगल, एंड इट्स हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20। नंबर

0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आ जाओ आगरा वाले दिल्ली वाले मुंबई वाले चेन्नई वाले इंदौर वाले जो भी जहाँ से भी है सबके लिए डिस्काउंट है डिस्काउंट।
2: शो स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, रास्ता चाहे जो हो मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहाँ मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
3: विजिट विरानी ज्वेलर्स .com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th।

0: इंडिपेंडेंस डे. सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम.
1: ओनली ऑन 92.7 FM. रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी. इट्स हॉट.
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
2: अब मिर्ची खा.
4: रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

शरारत 20 हफ्तों तक जिस गाने ने नंबर वन पर रूल किया आज पहली बार किसी और पोजीशन पर है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक गाना नीचे आया है, इसका मतलब ये है कि इस काउंटडाउन को एक नया नंबर वन सॉन्ग मिलने वाला है। वैसे शरारत का मतलब होती है एक छोटी सी प्यारी सी गलती, अ प्लेफुल मिस्टेक। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चीजों के साथ शरारत करने की इजाजत नहीं होती, कुछ फिल्मों के साथ, कुछ एल्बम्स के साथ, क्योंकि वो सिर्फ हिट नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं। नंबर चार पर इस हफ्ते है चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। गाना तो वापस आ गया लेकिन वो फीलिंग नहीं आई, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्लासिक को रिक्रिएट करना आसान है, उसकी रूह को वापस लाना नामुमकिन के बराबर। इसलिए आवारापन 2 को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो इमरान हाशमी की वो दुनिया थी जहां गाने खत्म होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग से निकल नहीं पाए। एंड देन वी हर्ड ऑफ आवारापन 2, जिसका नया गाना वे जुनून हमने पहली बार सुना।

Now on first listen, laga ठीक है. दूसरी बार सुना तो लगा एक सेकेंड जरा रुको. And then तीसरी बार I had goosebumps. ये गाना हिट होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ये आपके अंदर उतरना चाहता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, जहर की तरह. और तब समझ आया कि लोगों ने वो बात क्यों बोली थी. अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. My special request of the week is the same team that is giving us Ve Junoon in Awarapan 2. Imran Hashmi aur unke saath is gaane ke composer Mithun. Aur isi combo ne ek aur gaane mein jadu bikhera tha. Jab kai baar dil tootne ke bawajood phir mohabbat karne chalta hai. Special request.

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot. 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: कुड़िये ने मेरे दिल विच वस जा, कुड़िये ने तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा।

0: सी
1: की गल करनी है
0: तेरे मेरे बारे
1: की।
0: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: यार 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: ऊंचा लंबा कट फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। हाय, बॉलीवुड सीक्वल्स बहुत बनाता है, लेकिन इंसान, एक इंसान के सीक्वल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस हफ्ते रणवीर सिंह टर्न्ड 41 और मुझे एहसास हुआ कि पिछले 16 सालों में मेरी मुलाकात 3 अलग अलग रणवीर सिंह से हुई है।
1: मैं तो बॉलीवुड का सब्सक्राइबर रहा हूँ अपने बचपन से, लेकिन ओवर द इयर्स हमारी इंडस्ट्री में भी एवोल्यूशन आया है। जैसे कि पहला था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंग्स आर लॉट मोर कॉर्पोरेट, लॉट मोर स्ट्रीमलाइंड, प्रोफेशनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्री में। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ जब अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं और इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हो गई है। मैं आदि सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म दी, और मेरे तो बचपन का सपना पूरा हो गया जी, मैं क्या बताऊँ।
0: एक वो रणवीर था जो हमें बैंड बाजा बारात के बाद दिखा, नया, बेचैन, ओवर द टॉप। जैसे हर इंटरव्यू में वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ।
2: क्या बोलूँ यार, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, टचवुड कुछ तो अच्छा किया होगा। बट ट्रूथ बी टोल्ड, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। इट्स लाइक लाइफ हाईलाइट आफ्टर लाइफ हाईलाइट। आई एम लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू बट सेलिब्रेट। And people are recognizing that now more than ever before. You know, they did kind of in like 13, 15. There was Lutera and Ram Leela in 2013. Yeah. There was Dil Dhadakne Do Bajirao Mastani in 15. Now it's like Khilji, Simba and Karni Boy. It's like, wow. So it's a conscious endeavor to, you know, showcase that versatility. And it's all happening. So I'm really happy about it.
0: Phir mila dusra Ranveer. Ab wo superstar ban chuka tha. Use apne talent ka andaza tha. Use pata tha ki wo kitna achha actor hai. रोनस की जगह यकीन आ चुका था, लेकिन उसकी एनर्जी अभी उतनी ही बड़ी थी जितना उसका एम्बिशन। लेकिन अब भी वो बेचैन था। और फिर आया तीसरा रणवीर, खामोशी, नो इंटरव्यूज, नो हेडलाइंस, नो एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ एक फिल्म और उसके दो हिस्से, जिसने दुनिया से बाकी सब कुछ कह दिया। अजीब बात है ना, करियर की शुरुआत में रणवीर चाहता था कि दुनिया उसे सुने, आज दुनिया उसे सुनना चाहती है, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ खामोशी। आई टोल्ड यू, आज वी अबाउट टू गेट अ ब्रांड न्यू नंबर वन सॉन्ग। लेकिन ये गाना ब्रांड न्यू है नहीं, ये वो गाना है जिसे हमेशा नंबर वन होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी खामोशी है, एक गहरी वाली खामोशी। द नंबर वन सॉन्ग ऑन द मिर्ची Top 20. Number 1.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

बच्चन की एक्टिंग वाह, सुनील गावस्कर वाह, कपिल द सिक्सर वाह, लता मंगेशकर वाह, जाकिर का तबला वाह, भरतनाट्यम वाह, यहाँ का भांगड़ा वाह, यहाँ की लावणी वाह, यहाँ का डांडिया वाह, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा यहाँ दिवाली बाबा यहाँ की होली बाबा दुल्हन की डोली बाबा चनिया चोली।

0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down. This is the Indian sound. Together so strong in God we trust. Yeah, you cannot beat us.
0: ताज महल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: भांग की गोली वो नखरे वाली
1: दूंगी मैं गाली।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: भारतवर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा न केवल कानों में रस घोलती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो सुनिए कैसे हुआ पतित पावनी गंगा माँ का धरती पर

राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया तो राजा के 60,000 पुत्रों ने आश्रम में धावा बोल दिया।

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के श्री चरणों का ये गंगा रूप

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोने से पहले 3-2-1 रूल जरूर फॉलो करें। आइए जानते हैं कि ये रूल क्या है।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अक्सर जैसे मैं जब ट्रैवल करता हूँ, लेट्स से मैं यूएस गया, टाइम डिफरेंस आ गया, वापस आया, टाइम डिफरेंस आ गया, तो हम कहते हैं हम जेटलैग हो गए, थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, बहुत हमारा बॉडी डिफरेंस हो जाता है, सर्कैडियन रिदम जो है वो बिगड़ जाता है। लेकिन मैं कभी कभी अचंभे में होता हूँ, ये कैसे कर लेते हैं, तो हमको भी कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर आर सप्लीमेंट्स जो आप खाते हैं, मेलाटोनिन बोल के है वो वगैरह होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बॉडी तो टोल तो लेता ही है उसका, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, ये इतना आसान जॉब भी नहीं है।
4: स्पिरिचुअल फील्ड में भी आप अगर देखेंगे, किसी को भी अगर आप देखेंगे, कोई प्रीस्ट है, मंक्स हैं, जो मेडिटेट भी रेगुलरली करते हैं, उनको भी जेट लैग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं पता है।
3: हाँ, ये कैसे होता है?
4: क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होती है, इमोशनली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उनको उतनी नींद चाहिए होती है जो फिजिकली उनको रिचार्ज करे। अगर आपके मन में बहुत ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, स्ट्रेस एंजाइटी है, वो भी तो बहुत टोल लेती है ना, बॉडी पर भी टोल लेती है, मन के ऊपर भी टोल लेती है, इसलिए कई बार कई घंटे सोने के बाद भी आपको फ्रेश फील नहीं होता।
3: The
4: other thing what happens is, अभी जो एक चीज बहुत ज्यादा हो गई है, बिकॉज ऑफ विच स्लीप हमारी जो है वो अच्छी नहीं है, स्लीप से पहले का जो समय होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है,
3: वो वाइंड डाउन का टाइम होता है,
4: वाइंड डाउन का जो टाइम होता है, दोनों के लिए होता है, बॉडी के लिए भी। बॉडी के लिए तो शायद आपने सुना होगा, अगर नहीं भी किसी ने सुना तो कहते हैं सोने से लगभग 4 घंटा पहले खाना बंद।
3: हाँ, वो 3-2-1 रूल है, 3 घंटे पहले आप खाना बंद करिए, 2 घंटे पहले आप जितने भी स्क्रीन्स हैं उसको, ब्लू रेज है उसको बंद कर दीजिए, और 1 घंटे पहले आप ऐसे पॉस्चर में आ जाइए जहाँ पे रूम डार्क हो जाए, थोड़ा कूल हो जाए, पढ़ना वढ़ना है तो बात अलग है, माइंड को वाइंड डाउन करना शुरू कर दीजिए।
4: 3 घंटा तो चलो बहुत है, लेकिन अगर आप 3 घंटा भी नहीं कर सकते, फिर भी वी शुड बिगिन समवेयर। खाना भी अगर आपने रात को, रात का वो टाइम होता है जब बॉडी की भी हीलिंग होती है, आपके सारे ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, जो लंबा गैप होता है, चाहे वो 10 घंटे का है, 12 घंटे का है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बीमार नहीं होंगे, जो आपने शुरू में कहा वो लोग की दे एज फास्ट स्लो, माना उनको आप देखेंगे कि जल्दी वो डिजीजेस नहीं होते हैं, या लॉन्जेविटी उनकी ज्यादा होती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, बिकॉज बॉडी हील हो रही है ना। फॉर एग्जांपल आपका डिनर है 7-7:30 तक पूरा हो जाता है, अगर आप 10-10:30 तक सोते हैं, वो भी लाइट,
3: बिल्कुल शाम का खाना लाइट होना चाहिए।
4: शाम का खाना अगर आपका लाइट होता है, 7-7:30 मैक्सिमम अगर आपका डिनर कम्प्लीट हो जाता है, तो आपकी बॉडी को हीलिंग का टाइम मिलता है, आपके सारे ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, विच इज वेरी गुड। उससे बहुत बीमारियां नहीं होती, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। अगेन कई लोग कहते हैं ऐसे कैसे करें, ये पॉसिबल नहीं है, पर हो जाता है। आप अगर कोशिश करके 2 मील्स दिन में खाते हैं, मे बी अराउंड 12:30, अनदर वन एट अराउंड 6:30-7:30, इट इज पॉसिबल। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, 5-6 o'clock स्नैक होता है।
3: हाँ, बिल्कुल होता ही है, भूख लग जाती है।
4: 9:30-10 पर एक हैवी डिनर होता है, विच इज नॉट गुड। फिर अगेन आप सुबह, आपके लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारी एनर्जी वो खाने को डाइजेस्ट करने में चली जाएगी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अच्छी नींद के लिए सही डाइट कितनी जरूरी है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कई बार डाइटिशियन बोलते हैं कि आप एक काम करो, अगर स्पेशली जब आप वेट लॉस करने जाते हैं कि भाई अगर आप बड़े मील्स खाते हैं, ओवर ईटिंग की आदत है, आप एक काम करो हर दो दो घंटे में कुछ खाओ। लेकिन वो जो नहीं बोलते हैं, जो आपको समझना है कि वो दो दो घंटे में बड़े बड़े मील्स नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे मील्स होंगे तो आपके बॉडी को लगता है कि हाँ अब मैं सक्षम हूँ, मुझे जितना खाना चाहिए वो मिल रहा है। तो छोटे मील्स जो हैं, चाहे वो स्नैक ही हो, अगर 5 बजे स्नैक भी कर रहे हैं तो 7-7:30 तक अपना खाना खा के लाइट खत्म कर लेना है, और जो स्नैक भी है वो छोटा ही स्नैक हो, एक बिस्किट हो या जो भी हो।
4: एब्सोल्युटली, मतलब बॉडी को आपको स्टडी करना है। हमारी बॉडी को बहुत कम खाने की जरूरत होती है, वेरी ऑनेस्टली। हमें लगता है कि इतना चाहिए होता है पर हमें बहुत चाहिए नहीं होता। छोटे छोटे मील्स कई बार हम इसलिए खाते हैं, आजकल डाइजेशन बहुत पुअर है लोगों का, तो छोटा मील है, लाइट मील है, फास्टर डाइजेस्ट होता है। पहले कोई भी इतने छोटे छोटे मील खाता नहीं था
3: जी, बिल्कुल।
4: फिर तो आपको छोटे मील इतने प्रिपेयर करना और इतनी बार खाना, वो भी अपने आप में
3: पॉसिबल नहीं है,
4: हर बार पॉसिबल नहीं होता हर एक के लिए। सो नॉर्मली 2 मील्स अ डे एक बार पॉसिबिलिटी होती है
3: जी।
4: आप लाइट ब्रेकफास्ट है 12-1 o'clock के बीच में, लंच है बिटवीन 6 to 7:30, 6:30 to 7:30 के बीच में डिनर है, दैट इज स्टिल पॉसिबल फॉर लॉट ऑफ वर्किंग पीपल। अगर आप वर्क कर रहे हैं, आपके लिए उतना पैक करना अगेन लाइटर एंड पर है, ये छोटी चीज नहीं है। आप डाइट चेंज करेंगे, आपकी स्लीप बहुत इंप्रूव हो जाती है। डाइट और स्लीप का आपस में बहुत कनेक्शन है,
3: बहुत।
4: जो आप सर्कैडियन रिदम भी कह रहे थे, इसीलिए कहते हैं सनसेट से पहले जो हमारा डाइजेशन होता है वो मैक्सिमम एक्टिव होता है 2 o'clock के आसपास, 1 or 2 o'clock के आसपास। उस समय पर आप कुछ भी खा लें लगभग पच जाता है। आपका अगर डाइजेशन भी वीक हो ना तो भी आपको फिर ब्रेक करने पड़ते हैं मील्स। कम खाओ, कच्चा खाओ, रॉ खाओ, 2 घंटे बाद खाओ, पर वो भी बहुत एफर्ट लेता है समवेयर। ये भी एक अच्छा साइन है कि आप सब खा पाते हैं बट प्रोपोर्शन में। Proportion is very important. Somewhere where we go wrong is, you know, we are eating 2 meals, but उसमें
3: बहुत
4: ज्यादा हो जाता है। So proportion is very important. Again, self control आ गया ना, हर चीज में आ तो self control जाता है, will power वहाँ भी तो लगती है ना। जैसे fasting है, कई बार लोग fasting क्यों करते हैं, fasting is also such a good way to increase your self control.
3: जी बिल्कुल,
4: अगर आप उसको उस तरह से करते हैं। अगर आप वैसे करते हैं कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, 5 कब बजेंगे, 6 कब बजेंगे, अगेन। लेकिन अगर आप उसको फास्टिंग को उस तरह से करते हैं कि ठीक है, एक दिन बॉडी को रेस्ट दिया, ऑर्गन्स को रेस्ट दिया, तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होती है, ऑर्गन्स को भी रेस्ट मिलता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है
3: जी।
4: जब हम किसी एक चीज में सेल्फ कंट्रोल बढ़ाते हैं वो सब जगह बढ़ता है।
3: अच्छा,
4: वो संस्कार बन रहा है ना। मैं भले फास्टिंग खाने का कर रहा हूँ, दिखने में लग रहा है खाने का कर रहे हैं, पर आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ रहा है
3: तो फिर वो बाकी जगहों पर भी दिखेगा
4: 100%। चाहे फिर वो आपका फोन यूसेज का कंट्रोल है, चाहे आपका कोई भी चीज है जहाँ आपको लगता है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। सिर्फ खाना ही नहीं है, कई सारी चीजें होती हैं, जैसे माइंडलेसली आप स्क्रॉल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा समय फ्रेंड्स के साथ बिता देते हैं, बहुत लंबा लंबा फोन पर बात कर लेते हैं, कई चीजें हैं जहाँ आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा इसमें कंट्रोल होना चाहिए। वो एक संस्कार है, चाहे आपने हफ्ते में एक दिन फास्टिंग भी किया तो भी आप सेल्फ कंट्रोल का संस्कार, एक अपना ट्रेट डेवलप कर रहे हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: फास्ट या उपवास रखने से सेल्फ कंट्रोल और विल पावर कैसे बढ़ती है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: फास्टिंग से सेल्फ कंट्रोल बाकी जगहों पर भी आसान बढ़ता है और हमको वो हेल्प भी करेगा।
4: कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल आ रहा है ना आपके। आप उस दिन एक कर्मेंद्री को कंट्रोल कर रहे हैं, मुख को। आपके सामने कई चीजें हैं, कोई कहता भी है, आप कहते नहीं आज मेरा फास्ट है। आज मेरा फास्ट है। बहुत सारी चीजें आप कहते नहीं मेरा फास्ट है। तो आप खा सकते हैं पर आप नहीं खा रहे हैं। ऐसा नहीं अवेलेबल नहीं है, इट इज अवेलेबल बट यू आर चूजिंग। सेल्फ कंट्रोल का बढ़ता है जब आप चूज करते हैं, मजबूरी नहीं है
3: कि आज मैं नहीं करूंगा ये।
4: हाँ, मैंने चूज किया है, मैंने एक दिन के लिए ये चूज किया, खुशी से चूज किया है। आई हैव चोजन, चाहे वो एक दिन की फास्टिंग है, वो 9 डेज के, अगर आप उसको खुशी से चूज करते हैं तो 100% आपका सेल्फ कंट्रोल, विल पावर जो है वो बढ़ती है, मजबूरी नहीं होनी चाहिए।
3: नहीं, बहुत अच्छी बात कही। और अपने इंद्रियों की बात की तो मैं सोच रहा था कि फास्टिंग है कि हमने आज अपने मुख को या अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट दिया। कभी कभी पुराने जमाने में मैं देखता था, आजकल कम होता है लेकिन अभी भी होता है कि मौन व्रत होता है कि हम शब्दों का आज प्रयोग नहीं करेंगे। और मौन व्रत कहते हैं कि वो होता है कि आप साइन लैंग्वेज भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं कि आज मेरा बोलचाल बंद है, मेरी बोलचाल बंद है। उससे भी थॉट प्रोसेस में फर्क पड़ता है। फिर कभी कभी तो और इंद्रियों के, जैसे मैं आंखों के लिए कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। आंखों के लिए क्या ये होगा कि मैं आज सोशल मीडिया नहीं देखूंगा या मैं आज टीवी नहीं देखूंगा,
4: मैं आज किसी की कमी नहीं देखूंगा,
3: आज मैं किसी की कमी नहीं देखूंगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत,
4: करना चाहिए। इनफैक्ट ये एक वर्क प्लेस में हम ट्राई कर सकते हैं एक दिन के लिए। आज हमें हर एक की क्वालिटीज देखनी है, आज हमें यू विल फील सो डिफरेंट बाय द एंड ऑफ द डे। जो ये ओवर थिंकिंग है, क्या है, आप सबसे मिल रहे हैं, आप बोलते कुछ नहीं है, पर किसी की कमी देख ली, किसी की देख ली, फिर अंदर में वो चल रहा होता है। बोल नहीं रहे, पर एक होता है बाहर बोलकर क्रिटिसाइज करना
3: और एक मन में चल रहा है,
4: मन में तो चल रहा है ना,
3: तो संस्कार तो बन गया।
4: आपकी बैटरी कितनी डिप्लीट हो रही है, माना आजकल हम फिजिकली थोड़ी ना थक रहे हैं,
3: मेंटली ज्यादा थकते हैं,
4: मेंटली थक जाते हैं। क्योंकि हम मेंटली किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक दिन ये भी एक व्रत लेकर के देखें, आज एक दिन गुस्सा नहीं करेंगे,
3: आज गुस्सा नहीं करेंगे, आज किसी की कमी नहीं देखेंगे। तो गांधी जी के जो 3 बंदर वो बड़े काम की चीजें हैं। आज हम बुरा नहीं बोलेंगे, किसी दिन हम बुरा नहीं सुनेंगे किसी के बारे में या खुद के बारे में, परिवार वालों के बारे में, और एक दिन किसी की कमियां नहीं देखेंगे। बहुत अच्छी बात है।
4: एक दिन करके देखें, बुरा नहीं सोचेंगे, शुरुआत वहां से होती है।
3: शुरुआत तो होना चाहिए, बुरा नहीं
4: बंदर
3: सोचेंगे।
4: इसको 4 बंदर करते हैं। और ये शिक्षा बंदर के लिए नहीं है,
3: हमारे लिए।
4: जब हम नहीं करते हैं
3: तब हम बंदर बन जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात,
4: बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, पर बुरा नहीं सोचेंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.
5: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा। हमारा ऐसा विश्वास है।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नींद की कमी से हमारा दिमाग और शरीर किस तरह प्रभावित होते हैं, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि कई बार मैं लोगों से बात करता हूं तो कहते हैं अरे वो मेरे फोन पे तो ब्लू लाइट फिल्टर है, तो अब मेरे ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि, क्योंकि अक्सर क्या होता है जो ब्लू लाइट जो होती है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि दिन है, तो अभी सोने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड होता है, राइस के दाने के शेप का होता है, वो मेलेटोनिन सिक्रीट करता है। मेलेटोनिन सिक्रीट होने पर हमारे ब्रेन को पता चलता है कि अब सोने का वक्त हो गया। तो ब्लू लाइट क्या करता है, ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को बोलता है कि अभी तो दिन है, तो अभी सोने की जरूरत नहीं है। तो जब हम कभी ब्रेन को पता चलता है कि अब सोने का वक्त हो गया, तो ब्लू लाइट क्या करता है, ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को बोलता है कि अभी तो दिन है, तो अभी सोने की जरूरत नहीं है। तो जब हम कभी कोई भी

0: नहीं रखा क्योंकि आप तो कंटेंट दिए जा रहे हैं।
1: कितना लॉज को डिफाई करेंगे हम?
0: हाँ।
1: कुछ ना कुछ जो नियम बने हुए हैं, जैसे जल्दी उठना, अर्ली टू बेड,
0: अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अर्ली टू
1: राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और चाहिए क्या?
0: बिल्कुल।
1: हेल्थ चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: वेल्थ चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: विजडम चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: नर्सरी की राइम होती थी, अनफॉर्चुनेटली आजकल के बच्चों को ये राइम भी नहीं पता। पर सिंपल चीज थी, इसके अंदर बहुत विजडम था। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, विजडम भी। तो अभी क्या हो गया, लेट नाइट है। अब आप समझो 11-12 बजे तक नॉर्मली माइंडलेसली भी स्क्रोल कर रहे होते हैं कई बार। वो इतना जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट बहुत अपलिफ्टिंग भी नहीं होता। मैंने ये है कि आप रात के समय खाना तो खा रहे हैं, पर आप जंक खा रहे हैं। वैसे भी कहते हैं कि अगर रात को आपको भूख लग जाए, बॉडी के लिए भी क्या कहते हैं, अगर आपको खाना ही पड़े सो ईट समथिंग हेल्दी, ईट एन एप्पल और ईट समथिंग जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। आप रात को कोई बहुत एम्पावरिंग कंटेंट तो नहीं ले रहे हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पर या रिलैक्सेशन के नाम पर हम वो अब्सॉर्ब तो कर रहे हैं ना। अब जब हम लास्ट मिनट तक उसको कंज्यूम करते हैं, हम सो जाते हैं। माइंड ऐसा है जैसे फिफ्थ गियर पर है, उसको वो सारा प्रोसेस करना पड़ता है।
0: उसको टाइम लगेगा,
1: काफी टाइम लगेगा।
0: जैसे हमारे बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, हमारे माइंड को भी डाइजेस्ट करने में समय लगता है।
1: इसलिए जब हम सुबह उठते हैं तो मन थका हुआ होता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: कई बार तो मन सोता ही नहीं है, सिर्फ शरीर सोता है, उठ जाता है मन। और हम वंडरफुल ये है कि हमारा मन, इतने थके हुए मन से हम इतने कमाल कर रहे हैं।
0: हम सोचिए अगर हम सो जाते तो क्या,
1: तो क्या ही होता। मैंने थके हुए मन से भी हर एक जा रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है, वर्क प्लेस पर जा रहा है। बिकॉज समवेयर क्या होता है, ये भी आप यूज्ड टू हो जाते हो ना। एक टीचर है, वो यूज्ड टू हो जाएंगे पढ़ाने के लिए। एक डॉक्टर है, वो यूज्ड टू हो जाता है अपना वो करने के लिए। बट इट इज वेरी रिस्की इन सम प्रोफेशंस, डेफिनेटली। आप सर्जन हैं, डॉक्टर्स में भी कई बार हम देखते हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, स्लीप डिप्राइव्ड हैं।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या नींद की कमी रोड एक्सीडेंट्स की एक बड़ी वजह हो सकती है? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये सिर्फ ज्यादातर हम ऐसे प्रोफेशंस की बात करते हैं जहाँ पे वो बहुत ऐसा काम करते हैं जहाँ उनकी उनका फ्रेश होना बहुत जरूरी है, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू रीड समथिंग आउट टू यू सिस्टर श्रेया, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, CDC की रिसर्च है, US में की गई थी कुछ सालों पहले। वो कहते हैं कि 35% अडल्ट्स जो हैं वो 7 घंटे से कम नींद उनको मिलती है, जब ये रिसर्च उन्होंने की थी। और इंडिया में जब ये रिसर्च की गई थी तो कहते हैं कि 59% ऑलमोस्ट 60% लोग जो हैं उनको 6 घंटे से कम नींद मिलती है। अब इसके रेपरकशंस क्या हैं उस पर देखते हैं। रेपरकशंस ये हैं कि 40% लोगों ने बोला है कि दिन में कभी कभी झपकियां आ जाती हैं हमको। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफिस में अगर थोड़ी झपकी आ गई ठीक,
4: ऑफिस में ठीक है,
3: कभी होता है ना कि कोई बात नहीं, किसी ने देखा नहीं,
4: आप
3: यही है। तो मैं यही कह रहा था कि वर्स्ट पार्ट यह है कि 5% लोगों ने बोला है कि वो गाड़ी चलाते चलाते उनको नींद आई है, झपकी आई है। अब एक और आपको एक छोटा सा फैक्ट देता हूं कि इंडिया में 11% रोड एक्सीडेंट्स ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से होता है, जिसके बारे में लॉज हैं, इसके खिलाफ लॉज हैं और बहुत सख्त लॉज हैं, लेकिन 40% रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप होते हैं, जिसके खिलाफ कोई लॉ नहीं बना है,
4: क्योंकि वो लाइफस्टाइल इशू है ना।
3: बिल्कुल। तो ये जो आप कह रही थी कि डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर्स नहीं, आपके हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है कि ढंग की हमको स्लीप मिले, क्योंकि इफ 40% रोड एक्सीडेंट सिर्फ लैक ऑफ स्लीप की वजह से हो रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये इमेजिन करता हूँ कि जो ट्रक ड्राइवर है जो चलाता है, कभी कभी 17-18 घंटे नॉन स्टॉप चला रहे हैं, उनके लिए कितनी, उनके लिए एक लाइफ स्टाइल हैबिट हो गई, क्योंकि उनको एक शिपमेंट ड्रॉप करके दूसरा शिपमेंट लेना है और वो फिर सालों साल यही करते आते हैं। तो चाहे वो नाइट शिफ्ट हो, चाहे वो रोड ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो ऐसा बंदा हो जिसको रात को जाग के कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो, ये बहुत अपने आप को बोलना जरूरी है, हेल्थ कम्स फर्स्ट,
4: सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। हमें कई बार लगता है कि नहीं, जैसे इवन यू नो समटाइम्स व्हेन वी मीट डॉक्टर्स एंड नर्सेस तो कहते हैं नहीं नहीं हमारा सारा समय पेशेंट के लिए, पर समवेयर अगर हम फ्रेश नहीं है इट इज ऑल्सो चीटिंग टू द पेशेंट।
3: क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने,
4: क्योंकि आपसे गलती, आप देखें आज अगर कोई बड़ा सर्जन है कोई, आप जब कोई बीमार होता है पूरी शिद्दत के साथ उसके आगे आके सरेंडर कर देती है। एक मदर है, कोई भी अपने फैमिली मेंबर को 100% फेथ और ट्रस्ट के साथ वो उनको सरेंडर कर देती है, और वो जब सरेंडर करती है तो वो क्या एक्सपेक्ट करती है कि आप अपना जो भी है बेस्ट देंगे। समटाइम्स मिस्टेक्स कब होने लग जाती है, देखो जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं है तो आपकी बॉडी भी तो उसका जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्लो हो जाता है।
3: बिल्कुल।
4: कोई आपको डिसीजन लेना है, कोई आपको इमीडिएट उस समय पर रिस्पॉन्स आपका है वो सब स्लो हो जाता है, गलतियां होने के चांसेस हैं, कॉन्सेंट्रेट आप नहीं कर पाते।
3: बिल्कुल।
4: आपकी इनएफिशिएंसी बढ़ने लग जाती है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, समवेयर इट इज चीटिंग टू दैट पर्सन।
3: बिल्कुल।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
3: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुँच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कभी तो हंसाए।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है, आइए समझते हैं क्यों।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: टीनेजर था 17 साल का, कितने साल का मुझे याद नहीं है, कौन से शहर में था वो भी मुझे याद नहीं है। उसने एक स्टडी की थी अपने आप पे, 264 घंटे वो बिना स्लीप के गया, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, और उसने ये सारा डॉक्यूमेंट किया, इंटरनेट पे मिल जाएगा अगर आप खोजेंगे, कि दूसरे दिन मतलब 48 आवर्स के बाद उसको ऐसा लगने लग गया कि वो ड्रंकन स्टूपर में, मुझसे समझ में नहीं आ रहा था चीजें,
5: ज़ॉम्बी स्टेज हो जाए,
4: ज़ॉम्बी स्टेज हो रहा था एक्सेट्रा। लेकिन कहता है कि चौथे दिन तक मुझे हल्यूसिनेशन होने लग गए थे, मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ जो हो रहा है वो असल में हो रहा है,
5: ट्रू है कि इमेजिनेशन।
4: और बहुत सारी चीजें उसके आस पड़ोस में जब उसने बाद में पूछी, कहता है वो कह रहे थे कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं जो तुम इमेजिन करने लगे। तो रेस्ट कितना जरूरी है, और एक आप तो आपने ट्रस्ट की बात की, मैंने अपने आप पे भरोसा करके, भाई आप मेरा ख्याल रखेंगे, आप अपना बेस्ट करेंगे, लेकिन अगर सामने वाला रेडी नहीं है, उसको प्रॉपर स्लीप नहीं मिली हो, उसने अपना ख्याल नहीं रखा हो, तो दूसरे पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, इस बारे में बहुत अच्छी बात बोली।
5: इनफैक्ट अभी लॉज आने लगे हैं, हमेशा से कुछ लॉज इनके लिए तो होते ही हैं जो आपके
4: पायलट्स होते हैं,
5: पायलट्स के लिए तो कंपलसरी होता है इतना, यू नो समटाइम्स आई फील लॉज भी आपने बना लिए, कितने घंटे आपको सोना है, उतने घंटे आपको प्रोवाइड भी कर दिए, आप ऑनेस्ट हैं अपने लाइफस्टाइल के साथ।
4: इसके लिए सिस्टर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये जो ऑनेस्टी है, कभी कभी क्या होता है कि भेड़ चाल है या आज को जो हमने अपने लाइफस्टाइल बना लिया उस वजह से होता है, तो हाउ डू वी टेल पीपल, कैसे बताएं उनको कि क्यों जरूरी है।
5: कल मुझे किसी ने एक वो भेजा इमेज, आप फॉरवर्ड करते हैं ना, तो उस इमेज में सिंपल इमेज थी, उसमें एक साइड में लिखा हुआ था पिल्स एंड सर्जरी और बहुत लंबी लाइन थी, और दूसरी साइड पे लिखा था लाइफस्टाइल और लाइन ही नहीं थी। इट वॉज जस्ट एन इमेज विच स्पोक सो मच, पिल्स और सर्जरी में लंबी लाइन थी। तो आप उस लेवल पर आ जाते हैं कि आपकी बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाती है, एंड यू रेडी टू टेक मेडिसिन एंड सर्जरी, चाहे वो स्लीपिंग पिल है, कुछ भी है, कितने प्रकार के हैं, बट आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज करने में विल पावर। अब जैसे स्लीप ही है, बहुत मुश्किल तो नहीं है, हम तीन चीजें अगर ध्यान दें, किसी को भी अगर अपना स्लीप साइकिल ठीक करना है, पहला जैसे हमने फूड की बात करें,
4: खाना कम खाओ और बहुत पहले खा के बंद कर दो,
5: मतलब आप जितने बजे भी सोते हैं, सोना भी हमें एक्चुअली 10 से 11 के बीच में लेटेस्ट है ये।
4: तो सोने के 3 घंटे पहले कोशिश करो कि खाना बंद हो जाए,
5: खाना कम और खाना लाइट, जितना हो सके खाना कम और खाना लाइट। सेकेंड चीज जो हमने कहा कि ये तो बॉडी का खाना हो गया, मन का खाना भी
4: बंद करो, स्क्रोलिंग बंद करो, स्क्रीन सारे बंद करो,
5: कम से कम एक घंटा पहले। इनफैक्ट 1 घंटा पहले तो टोटल बंद हो जाना चाहिए, लेकिन जो वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है वो घर आते ही बंद हो जाना चाहिए।
4: और वो कई बार बंद नहीं होता, आई थिंक हम जुड़े रहते हैं, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो कॉल्स हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चलता रहता है।
5: हमारा ब्रेन मल्टीटास्क करने के लिए नहीं बना है।
4: अरे वाह, क्या बहुत बड़ी बात कर दी आपने, हमारा ब्रेन मल्टीटास्क करने के लिए बना ही नहीं।
5: इट इज अबाउट माइंडफुल, हर चीज माइंडफुल, ईटिंग माइंडफुल, वॉकिंग माइंडफुल, वर्किंग, मतलब हम एक समय पर अगर एक चीज करते हैं तो बेस्ट हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं। खाने के समय सिर्फ खाना, सोने के समय सिर्फ सोना, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू आई एम ओनली टॉकिंग टू यू 100%।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzilin.

0: Mirchi Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोने से कुछ समय पहले सारी कम्युनिकेशन बंद करना क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये बहुत जरूरी है सिस्टर, क्योंकि ज्यादातर इस पे तवज्जो नहीं दिया जाता, जोर इस पे दिया जाता कि मल्टीटास्क करना जरूरी है, मल्टीफैसेटेड होना बहुत जरूरी है।
4: मल्टीफैसेटेड अलग है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। व्हाट वी आर सेइंग इज वन टाइम पर,
3: एक समय पर एक ही काम करो।
4: एक समय पर अगर हम एक करते हैं तो हमारी 100% प्रोडक्टिविटी है, जो आजकल हम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा फोन वहाँ पे नोटिफिकेशन देता है, मैं देख नहीं रही हूँ,
3: लेकिन मेरा ध्यान वहाँ है,
4: ध्यान तो चला गया।
3: इसलिए कई बार रिलेशनशिप में बोलते हैं कि फिजिकली हुई है लेकिन मेंटली कहीं और है,
4: क्योंकि आंखों से पता चल जाता है। आप वहां पर हैं। सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कॉन्वर्सेशन में, इट्स एन आई कॉन्टेक्ट। आप देख रहे हैं, आप अगर मुझे सुन रहे हैं, सो आई विल सी सम चेंजेस ऑन योर फेस, एक्सप्रेशन पर कुछ दिखाई देगा, मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आपका ध्यान कहीं गया तो आप ब्लैंक हो जाएंगे एकदम। सो हम लोग, इट्स अबाउट माइंडफुल ईटिंग भी है, वो भी माइंडफुल होना चाहिए। 10 to 15 minutes लगता है। अभी ईटिंग भी क्या है, या तो ग्रैब अ बाइट टाइम ही नहीं है, या फिर मीटिंग ओवर लंच, मीटिंग मीटिंग है, लंच लंच है। लंच करके एक्चुअली मीटिंग होनी चाहिए। तो वो सब जो मल्टीटास्किंग हो गया है, इट इज अ टेकिंग टोल ऑन आवर माइंड आल्सो, बॉडी आल्सो। वर्क प्लेस से शुरू होना चाहिए। वर्क प्लेस वालों को भी जब घर भेजते हैं ना, तो घर भेज देना चाहिए, भेज देना चाहिए 8 बजे के बाद। इफ यू वांट कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो फुली रेस्टेड आए, खुश आए अगले दिन वापस, तो 8 बजे के बाद कोई ईमेल नहीं, अनटिल एंड अनलेस इट इज वेरी अर्जेंट। कुछ अगर बहुत अर्जेंट है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका 7 o'clock 8 o'clock कंप्लीट होता है, कंप्लीट है। उसके बाद जो अभी हो गया ना, 24/7 आपको फोन पर रहना है, 24/7 आपको अवेलेबल रहना है। कहीं कहीं जॉब्स में तो बहुत थोड़ा इनह्यूमेन जैसा ट्रीटमेंट हो गया है।
3: मुझे याद है, मैंने एक बॉस को अपने एक बार बहुत पुराना, मैंने कहा 24/7 को मैं अवेलेबल रहूंगा, 24 जुलाई को मेरे से बात कर लेना।
4: सम प्रोफेशंस वी कैन अंडरस्टैंड, आप सर्जन हैं, आप डॉक्टर हैं ना, उनका वो प्रोफेशन है,
3: बिल्कुल
4: वो समवेयर उनकी पावर भी बढ़ जाती है उससे डील करने की। उनको जब रात को 3 बजे या 4 बजे फोन आता है ना, वो पैनिक नहीं करते,
3: क्योंकि उनकी आदत है, उनको पता है जरूरी है,
4: उनको पता है जरूरी है, उनकी बॉडी को, उनके माइंड को धीरे धीरे उस चीज की हैबिट हो जाती है। वो उतना उस चीज को अब्सॉर्ब नहीं करते, जैसे हम पैनिक कर जाएंगे, वो पैनिक नहीं करेंगे, दे यूज्ड टू इट, उनको पता होता है। बट फॉर ऑल ऑफ अस, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन बंद हुआ, देन वी आर अवेलेबल फॉर आवर फैमिली 2 घंटा। हम अवेलेबल हैं, वहां से डिस्कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर अवेलेबल होंगे, और उसके बाद सोने से पहले तो टोटल डिस्कनेक्ट। आप फोन से भी डिस्कनेक्ट, लोगों से भी डिस्कनेक्ट। तो हमने पहली चीज जो करी, खाना जल्दी खाया,
3: खाना कम खाया और जल्दी खाया।
4: दूसरा जो हमने किया,
3: सारे स्क्रीन्स बंद कर दिए,
4: सारे स्क्रीन्स बंद कर दिए। वी आर विद द फैमिली, सोशल इंटरेक्शन है, एनर्जी का एक्सचेंज है, टेक्नोलॉजी के साथ ही नहीं है। देन कम से कम 15-20 मिनट्स अपने साथ बिताएं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
3: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
2: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
3: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
2: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington. सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक भाई साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरा जो बेटा है वो MBBS फोर्थ ईयर में है, मैं उसे मेडिटेशन प्रैक्टिस करना कैसे सिखाऊं, वो रिएक्ट करता है आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनने से ही और बिल्कुल पसंद नहीं करता है सजेशन, और कभी कभी उसे ऐसा लगता है, वो कहता है कि ये ओल्ड पीपल के लिए, बूढ़े लोगों के लिए है, वो सुबह उठता भी नहीं है और ना ही जल्दी सोता है। अब मैं क्या करूं?
2: कहीं ना कहीं ये भी हमारी कंट्री में एक बहुत डीप बिलीव सिस्टम है कि स्पिरिचुअलिटी बूढ़े लोगों के लिए है या आफ्टर 60 है। ये बिल्कुल ऐसे कहना है कि पहले तो लाइफ के सारे एग्जाम्स दे लो और उसमें कहीं पास हुए कहीं फेल हुए और फिर पढ़ाई पढ़ेंगे कि वो एग्जाम्स कैसे देने थे। तो स्पिरिचुअलिटी एक वे ऑफ लाइफ आपको सिखाती है। अगर वो वे ऑफ लाइफ हम आज नहीं सीखते, बाद में जब कई लोग आते हैं ना हमारे पास भी, तो उनको बहुत बड़ा रिग्रेट ये रहता है कि हम पहले क्यों नहीं आए। अगर हम पहले आते तो हम इस प्रॉब्लम को ऐसे डील करते, रिश्तों में ऐसे चलते। सो अगेन, इसको ये माइंडसेट नहीं बनाए दैट इट इज फॉर ओल्ड पीपल, क्योंकि हम है ही स्पिरिट, वी आर अ स्पिरिचुअल बीइंग इन अ फिजिकल बॉडी। हम फिजिकल नहीं है, स्पिरिचुअल बीइंग इन अ फिजिकल बॉडी है। तो स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ। सेकेंडली, हम किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। इंस्पायर करने का तरीका भी बहुत बोलने का नहीं होता, आप ये करो आप ये करो, ये जो कई बार थोड़ा नैगिंग जैसा हो जाता है बार बार, मुझे नहीं लगता आज की जेनरेशन पर ये बहुत वर्क करता है। पहले करता था कि नहीं वो भी नहीं मुझे पता, लेकिन जो चीज़ वर्क करती है वो है किसी का ट्रांसफॉर्मेशन। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर वो फादर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं या स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल जीते हैं और उनके अंदर का जो चेंज है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो काम है, स्टेबल है, डिसीजन ले पाते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ही किसी को इंस्पायर कर सकता है। तो इसीलिए अगर उन्होंने राय दे दी, उन्होंने रिक्वेस्ट कर लिया, अभी वो ऐसा वे ऑफ लाइफ अगर बनाएंगे, सो मे बी दैट विल इंस्पायर द चाइल्ड।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, उठ भी जाओ क्योंकि कॉफी से पहले अगर किसी पे ट्रस्ट करना है तो वो है मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अगले कुछ घंटों के लिए चाहे तुम्हारे ऑफिस जाने का ट्रैफिक हो या फिर तुम्हारा सबवे का प्लेटफॉर्म हो या किचन में टिफिन पैकिंग का चैंपियनशिप चल रहा हो, कंसिडर मी एज योर फेवरेट बैक सीट बेस्टी। यहाँ पर तुमको मिलने वाला है बॉलीवुड का तड़का, म्यूजिक, मस्ती, हंसी की अनलिमिटेड रिफिल्स, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया एंड थोड़ा सा अरे यार ये तो मेरा फेवरेट गाना है, ऐसे वाले बहुत सारे मोमेंट्स मिलने वाले हैं। साथ साथ में मिर्चीदार बैंगर म्यूजिक भी है, एंड ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अराउंड द वर्ल्ड की खबरें, वेदर अपडेट एंड ढेर सारी बकबक। तो अपना चाय, कॉफी, ब्रेकफास्ट सब कुछ तैयार कर लो, मेरे साथ चिपक कर बैठ जाओ। मिर्ची मॉर्निंग्स हैज जस्ट ऑफिशियली बिगन। फटाफट से मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन. सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.

0: SG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसला और सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और चलो अब शुरू करते हैं हम बिना पासपोर्ट के टाइम ट्रैवलिंग। 1799 में इजिप्ट के राशिद विलेज में मिली रोजेटा स्टोन, जिसने एंशिएंट इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स का पासवर्ड ही क्रैक कर दिया। फिर 1945 में न्यू मेक्सिको में हुआ ट्रिनिटी टेस्ट, दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, एक ऐसा दिन जिसने साइंस और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों की डायरेक्शन बदल दी। 1965 में नासा के मरीनर 4 ने मार्स की पहली क्लोजअप फोटोज भेजी। 1996 में लॉन्च हुआ MSNBC 24 आवर न्यूज चैनल। 2009 में स्पेस शटल एंडेवर उड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कीबो मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए। और फुटबॉल लवर्स, 2018 में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप जीता। आलेले ब्लू, यानी कि कम ऑन द ब्लू, ये उस साल का शॉर्ट एंड सिंपल इम्पॉसिबल टू फॉरगेट फैंस का चैंट बन गया। और फैंस का कहना था अगली बार पक्का। And that's it for your time traveling journey with me, Priscilla on Mirchi Mornings. अब चलते हैं थोड़े मिर्चीदार bangers सुनते हैं। तब तक तो मुझे follow करो। Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X, and WhatsApp पर number है 9033 Mirchi. That's 9033647244. फिलहाल के लिए stay tuned and stay hot.

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
3: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
4: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
7: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनरा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
8: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियो स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इजलिन।
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
10: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
9: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और चाय गर्म है, ट्रैफिक स्लो है, लेकिन फीवा का टेम्परेचर जो है फुल ऑन हाई है।
0: मिर्ची वॉच इट।
1: स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर अपनी सिर्फ दूसरी फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बना ली है। मिकेल ओयात्सबाल ने 22nd मिनट में पेनल्टी कन्वर्ट की और पेड्रो पोरो ने सेकंड गोल मार के फ्रांस का 3 फाइनल्स इन अ रो वाला ड्रीम फुल टाइम पर ही पैक कर दिया। स्पेन अब 37 मैचेस से अनबीटन है और ओयात्सबाल टूर्नामेंट में अपने 5 गोल्स के साथ स्पेन के वर्ल्ड कप हिस्ट्री बुक्स में डेविड विला एंड एमिलियो बूत्रागेनियो के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। और फ्रांस के कैप्टन किलियन एम्बापे, जो टूर्नामेंट में 8 गोल्स के साथ गोल्डन बूट रेस में टॉप पर हैं, इस मैच में स्कोर नहीं कर पाए। एंड दूसरी खबर ये है कि अर्जेंटीना सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि 500 किलो से ज्यादा अपना देसी स्टाइल बीफ भी कैंसर सिटी बेस कैंप ले आई है। लोमो एंट्रानिया मतांबरे, फुल ऑन बारबेक्यू सीन चल रहे हैं भाई। मोटिवेशन लेवल इज होम का खाना, तो होम का खाना ही होता है। और तीसरी खबर ये है कि सोशल मीडिया पर 9 मिलियन से ज्यादा सिग्नेचर्स वाले एक ऑनलाइन पिटिशन में कुछ फैंस अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप से बाहर करने की डिमांड कर रहे हैं, अलेजिंग रेफरिंग बायस इन फेवर ऑफ लायनल मेसी एंड अर्जेंटीना। ये याद रहे कि एक फैन ड्रिवन ऑनलाइन पिटिशन है, इसका टूर्नामेंट या फीफा के डिसीजन पर कोई ऑफिशियल असर नहीं है। फुटबॉल में इमोशंस थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तक चलते हैं, जस्ट लाइक एवरी अदर स्पोर्ट। अब देखना ये है कि स्पेन फाइनल में इंग्लैंड से टकराएगी या अर्जेंटीना से। और आज है ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल, इसलिए फटाफट से मुझे फॉलो कर दो। मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033-6-4-7-2-4-4. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
2: तेरी मम्मी की जय।

लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद हो ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: है बादशाह।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: Tera kya hoga, Kalya?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब टेम्परेचर का हाल चाल सुनने वाले हो, यानी कि वेदर अपडेट। अभी फिलहाल हो रहा है 75 डिग्रीज फारेनहाइट, सनशाइन फुल अटेंडेंस पर है, हवा चल रही है सनन सनन, इसीलिए फील हो रहा है 74 डिग्रीज फारेनहाइट के आसपास, यानी कि एसी ने आज थोड़ा सा ओवर टाइम कर दिया है। देखो सुबह 10-11 बजे तक थोड़ा सा पार्टली क्लाउडी स्काईज दिखने वाले हैं, लेकिन 2 बजे के आसपास क्लाउड्स जो है वो थोड़े से और ज्यादा गैदर हो जाएंगे। मोस्टली क्लाउडी कंडीशंस एक्सपेक्टेड है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में रेन का जीरो चांस है। हाँ जी, 0 मिलीमीटर्स प्रेसिपिटेशन है, मतलब कि अम्ब्रेला आज भी पेड लीव लेकर घर पर बैठ सकता है। लेकिन ये सुनो कि आफ्टरनून में टेम्परेचर सीधा 96 डिग्रीज फारेनहाइट तक पहुंच सकता है, और कल से भी ज्यादा गर्म होने वाला है आज का दिन। कल का हाई था 91 डिग्रीज फारेनहाइट और आज 96 डिग्रीज फारेनहाइट तक जाने वाला है। मतलब कि वेदर कह रहा है आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग फीफा वाला हीट। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आज एक्सट्रीम हीट वार्निंग है और एयर क्वालिटी अलर्ट दोनों ही इफेक्ट में है। इसका मतलब यह है कि बाहर जाना जरूरी नहीं है तो घर पर बैठो, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है तो अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करना बनता है, साथ में सनस्क्रीन लगाना बनता है, और साथ में लाइट कलर के कपड़े पहनना बनता है। और अगर पॉसिबल हो तो आफ्टरनून की डायरेक्ट धूप से थोड़ा सा बचकर रहो, स्पेशली बच्चे और सीनियर सिटीजन जिन्हें बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है वो ना जाएं। प्लीज टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। वैसे भी यार गर्मी पड़ते ही इंडियन मम्मीज का एक फेवरेट डायलॉग है, और घूमो बाहर तबीयत खराब हो जाएगी। एंड इफ यू रिलेट टू दैट, फटाफट से मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट, क्योंकि आने वाले मिर्ची दे आर बैंगर्स।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब आने वाली है खबरें फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले अमेरिका में सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट ने हाउस से ग्रीन सिग्नल ले लिया है। अगर ये बिल सेनेट से भी पास हो गया तो हर साल क्लॉक्स को आगे पीछे करने का ड्रामा खत्म हो जाएगा। मतलब कि स्प्रिंग फॉरवर्ड फॉल बैक की मैथ क्लास से परमानेंट छुट्टी हो सकती है। लेकिन होल्ड ऑन, अभी सेनेट की अप्रूवल और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही ये लॉ बनेगा। एंड नंबर टू पर इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन अपनी पहली स्पेस मिशन के लिए सोयूज MS-29 से सक्सेसफुली लिफ्ट ऑफ कर चुके हैं और अगले 8 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसर्च करेंगे। AI असिस्टेड मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स भी होने वाले हैं वहां पर। एंड फाइनली स्पोर्ट्स से, इंडिया ने एच बैस्टन में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया और उनका 11 इयर्स का ODI अनबीटन होम स्ट्रीक वहां पर स्टॉप हो गया है। कैप्टन शुभमन गिल ने क्लासी 80 रन्स बनाए। अक्षर पटेल ने ऑलराउंडर धमाका किया है, 4 विकेट और अनबीटन 57 का। और वॉशिंगटन सुंदर के साथ मैच विनिंग पार्टनरशिप करके इंडिया को लगातार 6th ODI विन भी दिला दिया है इंग्लैंड के खिलाफ, काफी देसी स्टाइल में। एंड दैट्स द एनर्जी वी नीड इन स्पोर्ट्स। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड अभी के लिए मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
3: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन,
9: इसलिन, न्यू जर्सी। Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Anuka's destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on making charges. Shop before 19th July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Esalen, New Jersey, and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNC apply. Joy Anuka's, world's favorite jeweler.
10: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। फीफा वर्ल्ड कप से नॉर्वे का सफर क्वार्टर फाइनल्स में खत्म हुआ, लेकिन हॉलैंड ने मूड को ऑफसाइड नहीं होने दिया है। वर्ल्ड कप के एग्जिट के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड इजाबेल जोहानसन के साथ इटली के ब्यूटिफुल सिसिली में डोल्चे एंड गबाना ऑल्टर मोडा फैशन शो अटेंड करते हुए नजर आए हैं। बोथ वर ट्विनिंग इन एलिगेंट व्हाइट आउटफिट्स। हॉलैंड लुक्ड सुपर शार्प इन क्लासिक टेलरिंग एंड इजाबेल ने क्रिस्टल एम्बेल गाउन में फुल रेड कार्पेट वाइब्स दी। मतलब कि फुटबॉल पिच हो या फैशन रनवे हो, स्टाइल का स्कोर तो इनका 10/10 ही रहने वाला है। और वैसे भी हम देसी लोगों का एक रूल तो पक्का है, शादी हो, फेस्टिवल हो या फैमिली फंक्शन हो, एक अच्छा आउटफिट कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली 3000% बढ़ा ही देता है। तो इस मामले में मुझे लगता है कि हॉलैंड काफी देसी है। स्पीकिंग ऑफ लुकिंग योर बेस्ट, अगर तुम किसी की वेडिंग, एंगेजमेंट या स्पेशल सेलिब्रेशन की शॉपिंग प्लान कर रहे हो, स्पेशली ज्वेलरी से रिलेटेड, तो आरके ज्वेल्स लेकर आए तुम्हारे लिए स्पार्कलिंग ऑफर। एक्सक्विजिट ज्वेलरी कलेक्शन के साथ $250 का अमेजिंग गिफ्ट कार्ड एब्सोल्युटली मुफ्त मुफ्त मुफ्त, यानी कि फ्री मिल रहा है। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस जहां पर मिलता है उसको कहते हैं आरके ज्वेल्स, क्योंकि शाइन सिर्फ डायमंड्स की नहीं होती बल्कि तुम्हारी स्माइल में भी शाइन होनी चाहिए। पहुंचो वहां पर फटाफट से और अभी बने रहो यहीं पर, यानी कि मिर्ची मॉर्निंग्स पर आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स। मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय सोशल्स, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: आ जाओ आ जाओ, आगरा वाले आगरा वाले, दिल्ली वाले दिल्ली वाले, मुंबई वाले चेन्नई वाले, इंदौर वाले, जो भी जहाँ से भी है, सबके लिए डिस्काउंट है डिस्काउंट।
1: शो स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, रास्ता चाहे जो हो, मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहाँ मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
2: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन.
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
8: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
10: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा.
11: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. Yeah.

0: आवाज दी है नील कमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नील कमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: A very happy birthday to everyone celebrating today, बोले तो 15th of July को. मेरा नाम है Priscilla, this is Mirchi Mornings. और अगर आज तुम्हारा happy वाला birthday है, तो remember, तुम सिर्फ एक साल बड़े नहीं हुए हो, बल्कि officially और legendary हो गए हो. और पता है आज तुम्हारे साथ अपना special day कौन से celebrities share करते हैं? सबसे पहले है Oscar winning actor Forrest Whitaker, talented actress Diane Kruger, comedian Gabriel Iglesias, जिन्हें दुनिया प्यार से fluffy भी कहती है, legendary सिंगर लिंडा रॉनस्टैट एंड ब्रायन ऑस्टिन ग्रीन. सबका बर्थडे आज ही के दिन है तुम्हारे साथ साथ. हिस्ट्री लवर्स के लिए भी बोनस है, आज के दिन जन्मे थे वर्ल्ड फेमस डच पेंटर रेम्ब्रांट वैन राइन, जिनकी पेंटिंग्स आज भी मास्टरपीसेस मानी जाती हैं. और वुमेन्स राइट्स मूवमेंट की एक फियरलेस लीडर एमेलिन पैंकहर्स्ट, जिन्होंने हिस्ट्री में एक पावरफुल चैप्टर लिखा है. तो अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी वाला बर्थडे है, क्रिएटिविटी टैलेंट लाफ्टर से भरपूर हो तुम और करेज कूट कूट कर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, अब बस केक पर कैंडल्स लगाओ और कैलोरीज को भूल जाओ और विश ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए. मेरी तरफ से भी दुआ है कि आने वाला साल तुम्हें हेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस और बहुत सारी खुशियां दे जाए. और हाँ, मुझे तुम अपने बर्थडे शाउट आउट, बर्थडे इनवाइट्स या फिर बर्थडे केक के पिक्चर्स भेज सकते हो. मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 Mirchi, दैट्स 9033647244. अभी चलाती हूँ तुम्हारे लिए एक बर्थडे का मिर्ची दैट बैंगर. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and this is मिर्ची मॉर्निंग्स. अब वो टाइम आ चुका है जब हम पता करें कि गोल्ड एंड सिल्वर क्या कर रहे हैं.
2: Rajyos wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at 4060 डॉलर पर ट्राई के साथ गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से अबाउट 100 डॉलर पर ट्राई नीचे ट्रेड कर रहे हैं. डेफिनेटली बाय बनती है. Rajyos के साथ 0% इंटरेस्ट जीरो डाउन पेमेंट पे आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने के लिए आइए Rajyos की स्पेशल फाइनेंसिंग को अवेल करें, जिसमें आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके आप ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं और 9 किश्तों में बिना किसी इंटरेस्ट बिना किसी हिडन फी के आप पैसे दे सकते हैं, ताकि जब गोल्ड का प्राइस बढ़ जाए तो उसका बेनिफिट आपके साथ रहे. और Rajyos ऑल्सो गिव्स यू फुल गोल्ड एक्सचेंज वैल्यू फॉर योर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी. आपके पास अगर पुरानी ज्वेलरी है दुनिया में कहीं से भी खरीदी, Rajyos उसके सामने फुल एक्सचेंज वैल्यू देते हैं. तो आइए Rajyos के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू
1: एंड देयर यू हैव इट, द अपडेटेड रेट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ सुना तुमने मिर्ची मॉर्निंग्स पर. अभी जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. WhatsApp number is 9033 Mirchi. Stay tuned and stay hot.
0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची आवर का 3 ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले साइबर वर्ल्ड 6 सीरियस अपडेट। रिपोर्ट्स के हिसाब से रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने इंडिया के कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और अलेजेड फैसिलिटी ब्लूप्रिंट्स डार्क वेब पर पोस्ट किए हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हुए तो सिक्योरिटी कंसर्न्स को सीरियसली इवैल्यूएट करना जरूरी होगा। नंबर 2 पर इंडिया ने पैलेस्टाइन के लिए 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक आर्टिफिशियल लिम्ब फिटिंग सेंटर और एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पैलेस्टाइन की एम्बेसी ने इस अनाउंसमेंट के लिए इंडिया का पब्लिकली शुक्रिया अदा किया है। एंड फाइनली सोशल मीडिया से एक वायरल स्टेटमेंट में बलूचिस्तान की तरफ से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना क्लेम किया गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस क्लेम की अभी तक कोई ऑफिशियल या इंटरनेशनल वेरिफाइड कॉन्फर्मेशन नहीं हुई है और किसी रिकग्नाइज गवर्नमेंट या इंटरनेशनल बॉडी ने इसे फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं किया है। दिस इज अबाउट बलूचिस्तान डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। फिलहाल ये स्टोरी अभी डेवलपिंग सिचुएशन में है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
3: లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
4: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటైర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్. कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
9: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है.
8: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक, न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
12: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। सुबह का चाय, नाश्ता, पानी सब कुछ हो चुका है, तो अब जरा सितारों की सुन ले।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज रियलिटी को फेस करना ही सुपर पावर है। जो बात अवॉइड कर रहे थे उसको आज टैकल करो। लकी कलर फॉर यू इज येलो एंड लकी नंबर इज 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, पुराने तरीके कंफर्टेबल हैं, लेकिन अपग्रेड ही ग्रोथ है। आज एक नया अप्रोच ट्राई करो। लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज, लकी नंबर इज 24। जेमिनी यानी मिथुन राशि, न्यू डायरेक्शन से मत डरो यार, आज एक बोल्ड डिसीजन फ्यूचर का फेवरेट मेमोरी बन सकता है। लकी कलर फॉर यू इज मैजेंटा, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, दिल के किसी कोने में एक ओल्ड फियर बैठा हुआ है, उसको एविक्शन नोटिस भेजने का परफेक्ट डे है आज। लकी कलर फॉर यू इज डार्क ब्राउन, लकी नंबर इज 18। लियो यानी कि सिंह राशि, आज अपनी आवाज कॉन्फिडेंटली उठाओ, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती है, अर्न भी होती है और कभी कभी रिमाइंड भी करनी पड़ती है। लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर, लकी नंबर इज 1। वर्गो यानी कन्या राशि, फैक्ट्स रेडी रखो, अगर डिबेट करनी पड़े तो गूगल मत बनो, गूगल से भी तेज और ज्यादा प्रिपेयर्ड रहो। लकी कलर फॉर यू इज मरून, लकी नंबर इज 14। एंड ये था राशि जोन का पार्ट 1। और ये याद रखो, हॉरोस्कोप डायरेक्शन देता है, डेस्टिनेशन तुम खुद डिसाइड करते हो। राशि जोन का पार्ट 2 लेकर आऊंगी मैं थोड़ी सी देर में, तब तक तुम मिर्चीदार बैंगर सुनो और मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: बजट मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी इट्स हॉट

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
9: I enjoy using inefficient and complex software, मामा.
10: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
2: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One is an all-in-one integrated software suite, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
3: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा.
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: वेलकम बैक मिर्ची मॉर्निंग्स पर. मेरा नाम है प्रिसिला और अब हम कंप्लीट करने वाले हमारा बचा हुआ राशि जोन
2: मिर्ची राशि जोन.
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, चॉइसेस बहुत हैं लेकिन फर्स्ट इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करो. दिल कभी कभी जीपीएस से बेटर काम करता है. लकी कलर फॉर यू इज ग्रे. लकी नंबर इज 6. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज कंफ्यूजिंग चीजें फाइनली क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी. ओल्ड माइंडसेट को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है. लकी कलर फॉर यू इज ऑरेंज. लकी नंबर इज 21. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आज एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज लाइफ का प्लॉट ट्विस्ट बन सकता है, बट क्यूरियोसिटी का वॉल्यूम हाई रखो. लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 32. केप्रिकॉन यानी मकर राशि, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म ही आज का सुपर हीरो केप है. लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 11. एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, क्रिएटिव आइडियाज की बारिश होगी आज. बस एक्साइटमेंट में ओवर एक्टिंग मत कर देना, मॉडरेशन भी एक टैलेंट होता है. लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 27. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसीज यानी कि मीन राशि, जो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन पेंडिंग है आज उसे फेस करो. कभी कभी पीस का शॉर्टकट ऑनेस्टी से होकर जाता है. लकी कलर फॉर यू इज एक्वा ग्रीन. लकी नंबर इज 3. एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट 2. मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ तुम सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स. कीप वाइबिंग विथ मी ऑफलाइन एज वेल. सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करो. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
5: अब मिर्ची खा।
7: Radio Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: और बस आज का मिर्ची मॉर्निंग्स भी अपने कुछ बचे हुए गानों की तरफ बढ़ रहा है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड ऑनेस्टली तुम्हारे साथ ये मॉर्निंग ड्राइव कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता है। लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ अपडेट देकर जाती हूँ। अगर तुम क्रिस्टोफर नोलन के बर्थडे वाले फैन हो ना मेरी तरह, तो ईयर्स ओपन। उनकी अपकमिंग फिल्म द ओडिसी सिर्फ स्टोरी के लिए ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के लिए भी हेडलाइंस बना रही है। आखिर नोलन की फिल्म है यार। दुनिया भर में सिर्फ 41 थिएटर्स ऐसे हैं जो इस फिल्म को IMAX 1570 फिल्म फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। ये वही अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन फॉर्मेट है जो नोलन पर्सनली प्रेफर करते हैं। और फन फैक्ट ये है कि मूवी शूट करते वक्त ना फिल्म रील लगभग हर 3 मिनट के बाद चेंज करनी पड़ती थी, मतलब कि पेशेंस लेवल इनका 3000 से ऊपर है। तो अगर तुम लकी हो जिनको ये थिएटर मिल जाए और देखने का चांस मिले, तो पॉपकॉर्न बड़ा वाला टब लेकर जाना, क्योंकि इतनी विजुअली स्टनिंग फिल्म में बीच में उठकर पॉपकॉर्न लेने तो नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें, राइट? अब जाने की बात हो ही रही है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम आज अपना दिन फुल ऑन स्माइल के साथ जियो, खाओ पियो ऐश करो। प्रिसिला की तरफ से टाटा बाय बाय, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। ऑफ कोर्स मुझे मिस करोगे तो मुझसे बातें करने के लिए इंस्टा और एक्स पर मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या आपने भी फील किया है कि सुबह जल्दी उठ जाओ तो ऐसा लगता है कि स्कूल जाने के लिए उठे?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और यार आज भी ना सुबह जल्दी उठना पड़े ना तो वाकई ऐसा लगता है कि स्कूल जाना है, स्पेशली जब फ्लाइट पकड़ने के लिए या फिर अर्ली मॉर्निंग किसी को स्टेशन या एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप के लिए उठा जाए तब। एंड द फीलिंग इज नॉट अ वेरी हैप्पी फीलिंग, हाँ, द फीलिंग इज ऑफ बटरफ्लाइज इन द स्टमक। और भले ही द ट्रैवल माइट बी फॉर फन, लेकिन सब कॉन्शियसली दिमाग में स्कूल जाने वाली फीलिंग आ रही होती है। समझ नहीं आ रहा यार कि ये सुबह सुबह स्कूल जाना ऐसा भी कैसा ट्रॉमा था जो आज भी ये सर चढ़कर बोल रहा है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या या आप नॉर्मल हो? डीएम करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। एंड इसी के साथ मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ और आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: Iselin, New Jersey. Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Autocars destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on making charges. Shop before 19th July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Iselin, New Jersey and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNC apply. Joy Autocars, world's favorite jeweler.
5: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी.
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
7: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
8: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
7: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: As a kid, जब मैंने DD1 पर सलमान और रेवती की मूवी लव देखी थी तो मुझे सलमान से तो प्यार था ही, रेवती से और हो गया.
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And I really loved her bubbly character Maggie played in the movie. और मुझे रेवती की स्माइल से तो प्यार ही हो गया था यार. इस मूवी ने हमें बड़े अमेजिंग अमेजिंग गाने दिए, जैसे
2: साथ

0: और एक और एक और एक और एक और ये भी सुनो।
1: आजा आजा गिव मी अ किस, ना ना ना ना टिल आई एम
0: मिस, ऑल इन एसपी बाला सुब्रमण्यम सर की आवाज में। और इस फिल्म में एक और खास बात थी जो मैंने सीखी, हाउ टू कंट्रोल एंगर इश्यूज। एंड बॉस दिस वर्क्स इन रियल लाइफ टू। हाँ, जब भी गुस्सा आए तो काउंट टिल 10 एंड गुस्सा शांत। मैं तो इसे आज भी यूज करती हूँ वाइल ड्राइविंग। दैट्स वन प्लेस इन माय लाइफ जहाँ मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आने का चांस रहता है और मेरे अंदर का पृथ्वी निकल कर आ जाता है। सलमान और रेवती ने लेटर ऑन एक ही मूवी में फिर से काम किया था, बट नॉट ऑपोजिट ईच अदर। फिर मिलेंगे में शी प्लेड द रोल ऑफ शिल्पा शेट्टीज डॉक्टर एंड सलमान प्लेड शिल्पा शेट्टीज लव इंटरेस्ट इन द मूवी। और वक्त देखो कैसे निकला कि टू स्टेट्स में रेवती ने आलिया भट्ट की मदर का रोल कर लिया है, लेकिन सलमान खान आज भी लीड के रोल में ही नजर आते हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
8: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
7: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
9: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
7: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट। It's 11:30 AM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अमजद खान सलमान खान की मूवी लव करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि उन्हें रोल बड़ा छोटा सा लग रहा था, लेकिन देन थोड़ा कैलकुलेशन करके देखा तो उन्हें चीजें सेट लगने लगी।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड अमजद खान, जिन्होंने लव में प्रेम यानी कि सलमान के गुरुजी का रोल प्ले किया था, उन्हें अपना रोल मूवी में छोटा लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने नोटिस किया कि सलमान ने ऑलरेडी साजन जैसी हिट मूवी की है एंड एसपी बाला सुब्रमण्यम इज सिंगिंग सॉन्ग्स इन दिस मूवी, तो उन्हें मूवी सही लगी। लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद वो बड़े नाराज थे, फॉर द रीजन कि वैसे ही उनका रोल उन्हें छोटा लग रहा था, और मूवी रिलीज होने के बाद उन्हें पता लगा कि उनके काफी सारे सीन्स एडिट कर दिए गए थे। To which he was told by the makers कि मूवी अननेसेसरीली लंबी हो रही थी, बट ही डिडंट फील सो, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कई सारे ऐसे सीन्स थे जो उन्हें अननेसेसरी लगे थे फिल्म के अंदर। बट सिवाय नाराज होने के और कुछ किया भी तो नहीं जा सकता था। इससे मुझे याद आया कि यार, मुझे अपनी लाइफ में ना काफी टाइम बाद पता लगा कि अमजद खान का नाम एक्चुअली है क्या, बिकॉज मेरा आधा बचपन तो उन्हें गब्बर सिंह के नाम से पुकारने में चला गया था यार, और नहीं तो। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कल हो ना उसका इंट्रो शॉट तो आपको याद ही होगा, जिसमें कि प्रीति जिंटा न्यूयॉर्क सिटी की सड़कों पर दौड़ती हुई जा रही हैं, अपनी मॉर्निंग जॉग करती हुई जा रही हैं। वेल, हियर मी आउट, दैट वाज नॉट एक्चुअली प्रीति जिंटा।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, हुआ ये था कि प्रीति को उस वक्त पैर में लग गई थी चोट, तो वो भाग नहीं सकती थी और ये सीन शूट करना था, तो मेकर्स ने डिसाइड किया कि प्रीति की जगह उनकी बॉडी डबल को दौड़ा देते हैं। और वैसे भी शूट तो बैक का ही था, शक्ल तो दिखानी ही नहीं थी। तो द वुमन रनिंग ऑन द रोड्स ऑफ न्यूयॉर्क सिटी इन द इंट्रो शॉट ऑफ कल हो ना हो इवेंचुअली वॉज नॉट प्रीति एंड समवन एल्स। एंड वेल, यहाँ इस फिल्म में प्रीति की जगह भी किसी और को होना था, एंड दैट वॉज करीना कपूर। बट क्या है कि करीना ने इस फिल्म के लिए पैसे कुछ ज्यादा चार्ज करने की कहा था, जिसकी वजह से करण जौहर उन्हें हायर नहीं कर पाया एंड इवेंचुअली प्रीति जिंटा केम इनटू द पिक्चर। और इसी वजह से करीना और करण के बीच में भी काफी डिफरेंसेस आ गए थे, जो कि लेटर ऑन द सॉर्ट हो गए थे। लेकिन ऑन द सेट्स ऑफ कॉफी विद करण, करीना ने ये बात जरूर कही थी कि उन्हें इस बात का मलाल जरूर था कि वो कल हो ना हो नहीं कर पाए। लेकिन गेस व्हाट, और किसने कल हो ना हो की? अर्जुन कपूर, एक्टिंग में नहीं, डायरेक्शन में। ही वॉज वन ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर्स इन द फिल्म। चलो जी, विद दिस मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को आगे खींचते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Chart Papers,
2: Yaadon ko chitthi.
1: Once upon a time, यूं भी था कि घर पर तुम स्पेयर में यूं रखे जाते थे, जैसे आज मेरी गाड़ी की डिक्की में स्पेयर व्हील रखा होता है कि कभी भी जरूरत पड़ी तो काम आएगा। पिंक, व्हाइट, येलो, ब्लू, जाने कितने रंगों में तुम आते थे। और जब मैम चार्ट पेपर पर बनाने के लिए कोई प्रोजेक्ट देती थी ना, तो तुम क्लास को रंगोली बनाते थे। तुम पर काम करना थोड़ा मुश्किल होता था जब तुम्हें अनरोल किया जाता और तुम दौड़ दौड़ कर वापस रोल हो जाते थे। फिर एक एंड पर पेंसिल बॉक्स रखा जाता, दूसरे पर बॉटल, तब जाकर कहीं तुम कंट्रोल में आते थे। मेरी ड्राइंग ना कभी भी अच्छी नहीं थी और मुझे हमेशा लगता था कि तुम बिना मेरे कोई काम किए ही ज्यादा खूबसूरत लगा करते थे। और सबसे ज्यादा तो तुम मैट फिनिश में दिख कर आते थे। मुझे याद है क्लास के टैग बोर्ड के लिए मैम अक्सर सुंदर सुंदर डेकोरेशंस तुम पर बनवाती थी, या जिसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा बना उसका काम वही लगाती थी। मुझे अच्छे से याद है, ये प्राउड मोमेंट मेरी लाइफ में कभी नहीं आया, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, तुम प्लेन ज्यादा खूबसूरत नजर आते थे। जब से स्कूल छूटा तो चार्ट पेपर तुम्हारा साथ भी छूट गया, लेकिन आज भी बड़ा दिल करता है कि तुम्हारे रंग अपने कमरे में भी भर दूं, यूं ही तुम्हें लाकर अपने रूम के एक कोने में तुम्हें घर दूं, क्योंकि तुम आज भी मुझे उतने ही अट्रैक्टिव लगते हो जितना बचपन में लगा करते थे, जब तुम अपने रंग मेरी स्टेशनरी में भरा करते थे। तुम्हारे रंगों की यादों में टिपी टिपी टॉप खेलती तुम्हारी सारा। Stay tuned with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, It's Hot.

0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
2: Inefficient,
3: very complex,
4: clumsy, or
5: confusion.
1: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची का।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है.
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना कैसेट के साइड बी का चौथा गाना है।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: पुकार, ये मूवी कब रिलीज हुई थी? ईयर 2000 में। और तब से ये बात कही जा रही है कि

और हम आज तक नहीं समझे कि यार यही तो लाइफ का टंटा है कि लाइफ में चीजें होती रहेंगी, लेकिन फंडा है कि जो भी हो सो हो प्यार का आसरा नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि अगर लाइफ में प्यार है, वो लोग हैं जो हमें हमारी वजह से प्यार करते हैं एंड नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर, तो जो होगा देखा जाएगा। कॉज इम्पोर्टेंट वो लोग हैं, सिचुएशंस नहीं। और हालांकि इस गाने में प्यार की बात रिलेशनशिप के एंगल से कही गई है, बट आई काउंट लव इन ऑल रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, वेल विशर्स, सब आते हैं इस अम्ब्रेला में। तो मैं तो कहती हूँ कि आज घर जाकर ना आपके प्यार के आसरे को एक जादू की झप्पी देकर एक अनसेट थैंक यू कहिएगा। दे आर अ ब्लेसिंग इन आर लाइव्स। एंड विद दिस नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ यही अगला गाना आ रहा, इंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
4: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
5: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: कभी तो हंसाए।
1: कर्ज मूवी का जो आइकॉनिक सॉन्ग है ओम शांति ओम, उसमें ना एक बहुत बड़ा गूफअप है। मिर्ची सुन रहे आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब गाने के शुरुआत के 5-6 सेकंड में ही आपको ये गूफअप देखने को मिल जाएगा। जैसे ही गाना स्टार्ट होता है तो स्टेज दिखाया जाता है जहाँ पे ऋषि कपूर परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे होते हैं। पीछे बैनर पे लिखा होता है डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, और फिर अगले शॉट में स्टेज के सामने की ऑडियंस को दिखाते हैं, उनके पीछे जो बैनर लगा हुआ है वो कहता है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। ऑप्शन दिया गया है जो दिल करे आपका मना लो। हो जाती है गलतियां यार, होता है, चलता है, दुनिया है। फिलहाल ब्रेक है पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: hey! तुमने कभी किसी से प्यार किया?
3: किया!
2: कभी किसी को

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम।

मिस्टर नटवर लाल फिल्म का ये गाना, और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन थे, रेखा थी और एक वन साइडेड लव स्टोरी थी। जी मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वन साइडेड लव स्टोरी थी एक टाइग्रेस की, जिसने इस फिल्म में काम भी किया है। आप इस फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स देखेंगे तो उस टाइग्रेस को, जिसका नाम भारती था, उसे प्रॉपर क्रेडिट्स भी दिए गए हैं। तो फिल्म का सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि काफी सीन्स में ये टाइग्रेस सेट्स पे थी। अब जिस वन साइडेड लव स्टोरी की मैं बात कर रही हूँ, वो इस टाइग्रेस को हो गया था जी इश्क हमारे बच्चन साहब से। बच्चन साहब जब सेट पे आते थे, खाना खाते थे, उसके बाद ही अपना खाना खाती थी, वरना खाना नहीं खाती थी। How adorable is that? आपने फिल्म देखी है तो आपको पता है, नहीं देखी आपने फिल्म तो आप जाके देख सकते हैं और ये लव स्टोरी इमेजिन कर सकते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

जाबाज फिल्म का वो गाना तो आपको पता है, बहुत ही रोमांटिक गाना, जब जब तेरी सूरत देखूं प्यार सा दिल में जागे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये एक डुएट सॉन्ग है, लेकिन ज्यादातर इस गाने में सिर्फ फीमेल सिंगर को क्रेडिट दिया गया है, सपना मुखर्जी को। मेल सिंगर का कहीं नाम ही नहीं मुझे मिल रहा था, तो मैंने ढूंढने की कोशिश की, तो पता चला कि इसके सिंगर हैं महेश गढ़वी, जो गुजराती फोक एंड लिटरेचर की बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी लेट मनुभाई गढ़वी जी के भाई रहे हैं, और बॉलीवुड में उन्होंने एक दो फिल्मों में गाया। उसके बाद वो और उनकी वाइफ, जिनका नाम आई थिंक नीतू जी है, ये अब्रॉड में स्टेज शोज, लाइव शोज, ये सब करते रहे हैं। लेकिन थोड़ी हैरत वाली बात है कि उनको क्रेडिट नहीं दिया गया है, जबकि उन्होंने जाबाज फिल्म के एक दो गाने और गाए हैं। एक तो एक जो कवाली है उसमें वो भी उन्होंने गाई है, और जाबाज का जो थीम सॉन्ग है वो भी गाया है। और मुझे ना बहुत टाइम तक लगता था कि इसमें सपना मुखर्जी के साथ मनहर जी की आवाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनीवे, ये गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

वाह वाह, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है। मैं जानती हूँ ये कहने के लिए बहुत गलत घड़ी है कि हमारे घर में आज जो बनी थी वो पकौड़ा कड़ी है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। थोड़ा सैड गाना हो गया था, मैंने कहा मूड लाइट कर लेते हैं। पकौड़ा कड़ी गर्मा गर्म साथ में जीरे वाले चावल, सलाद और आलू की सब्जी, वाह वाह, ये था मेरा लंच। अच्छा, गम से खुशी की ओर बढ़ते हैं, उसी के साथ एक शेर भी सुनो। शमीम करहानी नाम के शायर है, उनका शेर है, ये खुशी गमे जमाना का शिकार न हो जाए, ये खुशी गमे जमाना का शिकार न हो जाए, न मिलो ज्यादा हमसे कहीं प्यार न हो जाए। लव इश्क प्यार मोहब्बत के साथ अगला गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
4: Oak Tree Road लो, best diamond jewelry कोसम सर्च इस्तनरा Krishna Jewelers में exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mario stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

उफ क्या ही गाना है ये, थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गुलजार साहब ने लिखा है, और कई बार ना ऐसा होता है कि पूरा गाना ही बहुत बढ़िया होता है, बहुत सुंदर लिखा होता है, लेकिन कुछ लाइंस ना आपका दिल छू जाती हैं। आप बहुत कनेक्ट करते हो उन लाइंस से, कई बार आपको भी नहीं पता होता कि क्यों आप कनेक्ट कर रहे हो, ऐसी कौन सी याद है जो ताजा हो गई है, ऐसा कौन सा घाव है जो फिर से हरा हो गया है लाइंस को सुन के, या समथिंग अबाउट दोज लाइंस जो आपको बहुत पसंद आ जाती हैं। जैसे इसमें मैं बताऊं आपको कौन सी लाइंस मुझे पसंद है, कहीं किसी रोज यूं भी होता हमारी हालत तुम्हारी होती, जो रात हमने गुजारी मर के वो रात तुमने गुजारी होती। उफ गुलजार साहब, वाह वाह वाह। अच्छा, अगला गाना जो हम सुनने वाले हैं उसकी भी कुछ लाइंस हैं, मजरू साहब की लिखी हुई। तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए, देखो कहाँ ले जाए बेखुदी अपनी। सुन लेते हैं अभिमान फिल्म का ये गाना, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: It's 2:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
0: Purani jeans. With Charu, only

0: तेजाब फिल्म के बाद माधुरी दीक्षित ओवरनाइट सेंसेशन बन गई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनको इस बात का एहसास कब हुआ कि वो इतनी पॉपुलर हो गई हैं? सुनिए एक बार एक टेलीविजन शो पर उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मुझे पहली बार रिकॉग्निशन मिली स्ट्रीट्स पे, जैसे रास्ते पे चलते। तेजाब जब रिलीज हुई थी तब मैं यहाँ नहीं थी, मेरी बहन के शादी के लिए गई थी यूएस में। वापस आई, एयरपोर्ट पे उतरे हम लोग, बाहर आए तो सडनली एक बच्चा बोला, ए वो थे हीरोइनी हीरोइनी। तो भाग के आए दोनों, उन्होंने बोला अरे मुझे पहचाना। फिर बोलता है मैडम आप हीरोइन है ना, आप ऑटोग्राफ दीजिए ना। तो मैंने ऑटोग्राफ दिया तो एम से सिग्नेचर किया मैंने, तो दूसरे को बोलता है देख देख एम है मोहिनी मोहिनी।
0: तो तेजाब की मोहिनी का ये आइकॉनिक गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Listener mein back to back gana sunega.
4: Back to back gana sunega.
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only.

जय किशन दया भाई पांचाल यानी कि शंकर जय किशन वाले जय किशन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं इनका जन्म गुजरात में हुआ था और बचपन से इनको संगीत का शौक था। थोड़े थोड़े बड़े हुए तो हारमोनियम बजाने लग गए। माता पिता ने इनका टैलेंट देखकर इनको संगीत की शिक्षा दिलवानी शुरू की। कई गुरुओं से इन्होंने संगीत सीखा। फिर जब टीनेजर ही थे तब ये बॉम्बे आ गए, वहां पर भी इन्होंने संगीत सीखा। वहीं पर ये मिले अपने ढंटड़ैन जोड़ीदार शंकर से। ये दोनों भाइयों ने मिलके जो म्यूजिक बनाया है वो गाने मतलब एंथम बन गए। जैसे कि ये अगला गाना जिसने पता नहीं कितनी सारी शादियों में दुल्हन की एंट्री करवाई है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 3 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
2: Ghana Indie Top 10.
3: Kanika ke saath on Mirchi.
4: Mirchi par ab bari hai for asli pop countdown of the week. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika on Instagram. Hafte ke top 10 hottest pop gaano mein ek nayi entry hai. Hamara 90s 2000s ka indie pop classic hai. Of course there's a special spotlight. All this and more to seedha shuruaat karti hu is hafte ki with gaana number 10. Harsh Nussi ki awaaz, Harsh Nussi Deep Clear ki कॉम्पोजिशन उन्हीं के लिरिक्स. गाने का नाम है साडी सुन. तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार साडी सुन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद अनीश सरकार का उड़ी उड़ी पांच हफ्तों से इस काउंटडाउन पर अपना धावा बना के बैठा है. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
5: नंबर 10. हाउ चुप

0: कहाँ है वो लोग, नजर नहीं आ रहे जो बोलते रहते हैं कि सारे इंडिपेंडेंट गाने एक ही जैसे साउंड करते हैं। ये वाला सुनिए, अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी। व्हाट अ बैंगर ऑफ अ सॉन्ग। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाएं, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, पूरे दिन इंटरनेट पे बैठे रहते हैं तो वही गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो बिंदास आके हिट मी अप। इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स बाय एन आर्टिस्ट जिनकी आवाज सुनते ही ना, मतलब मेरे को एकदम वो मजे आ जाते हैं। यू नो देयर आर दीज वॉइसेस व्हिच मेक यू फील रियली हैप्पी। वो बोलते हैं खनक है उनकी आवाज में। आई एम टॉकिंग अबाउट एश किंग, जिन्हें मोस्ट पॉपुलरली हम जानते हैं एज वॉइस बिहाइंड सॉन्ग्स लाइक
2: आई लव यू।
0: कुछ बात उनकी आवाज में सुनते ही ऐसा मूड अच्छा हो जाता है। एंड इस आवाज को ढूंढ के हमारे पास लाए थे AR रहमान। साल 2009 में दिल्ली 6 में उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना गाया था। एंड द फनीएस्ट पार्ट अबाउट दैट कोलैबोरेशन इज दैट उस समय एश किंग की हिंदी डिक्शन इतनी अच्छी नहीं थी, वो बस UK से आए थे, बट AR रहमान सर ने उन्हें सुना एंड ही वॉज लाइक आप मेरे लिए ये गाना गा रहे हैं। एंड तब एश किंग ने AR रहमान के लिए ये वाला गाना गाया।
2: गिरा कहीं पर दफतन,
0: गाने का नाम है दिल गिरा दफतन। दिल्ली 6 की बहुत बड़ी एल्बम मसक अली अर्जिया के पीछे अगर इस गाने को भूल गए थे तो वापस इसको याद कर लीजिए। तब से लेके अब तक एश किंग हैज बीन द वॉइस बिहाइंड सम ऑफ द ग्रेट सॉन्ग्स लाइक मेहरबान, TMO। 2019 में उनका एक इंडी पॉप गाना आया था कॉल्ड हाई।

There's something about Ash King's voice which just naturally draws you towards this song. आप connect कर जाते हो. वो कभी गाने पे हावी नहीं होते हैं, बल्कि he lets you experience that song. तो अपने radio sets की volume बढ़ा दीजिए. नई नवेली entry debut कर रही है सीधा Ash King की आवाज में. गाने का नाम है Kinniya Soni. ये गाना debut कर रहा है this week on Gaana number 8. You are listening to Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है Kanika. Enjoy. Number 8.

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: ¡Rámbala!
0: ¡Burga, burga! ¡La vieja la burga!
1: ¡Mirchi, burga!
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू कोमल प्लीज?
2: स्पीकिंग
3: कोमल, हाय आई एम रवि. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
2: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
3: ओके.
2: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं. इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है.
3: राइट.
2: इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
3: ओके.
2: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी.
3: हाँ.
2: तो वहाँ मुझे छेड़ा.
3: कितने बजे गई थी आप?
2: साढ़े दस बजे.
3: साढ़े दस बजे क्यों गई थी आप? साढ़े दस बजे
2: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
3: किस तरह का काम पड़ गया था आपको साढ़े दस बजे, जो आपको इतनी हबड़ तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
2: मुझे बड़ी जरूरी काम
3: नहीं. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेकर कितना हम परेशान है, लड़कियाँ छेड़ रही है. आप निकल गई साढ़े दस बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
2: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो रहे
3: हैं. गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे साढ़े दस बजे?
2: खुद गुस्से में.
3: आप क्यों गई साढ़े दस बजे?
2: आप हद से ज्यादा.
3: क्या बात कर रहे
2: हैं? मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं.
3: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ? आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
2: नहीं कर सकते आप.
3: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों को कमेंट पास न करें, लड़कियों
2: की लड़कियों सुरक्षा
3: की किस तरह की. नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? साढ़े दस बजे क्यों गई आप? सागे फोन रखिए आप, बेकार की बात. हेलो
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ईव टीजिंग को लेकर.
2: ओके ओके ओके
3: ओके ओके ओके ओके मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए. कोमल कोमल कोमल कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहीं थी साढ़े दस बजे?
2: हाँ जी, मैं गुस्सा दिलाया.
3: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
2: ओके कुकड़ू को.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
7: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
6: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab, mirchi ka.
12: Radio Mirchi, it's hot.
13: Ghana Indie Top 10.
14: Kanika ke saath on Mirchi.
15: Number 7.

0: आदित्य रिखारी कुटले खां की आवाज रावटोर का म्यूजिक कोक स्टूडियो भारत का गाना दिस वाज ए अजनबी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना अनूप जैन की आवाज में, एक गाने का नाम है अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अर्ज किया है वाज ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello, स्वागत है आपका। This is the Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week, all about the hottest pop stars of the music scene. Instagram पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना शेयर करना हो, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 6 पर हमने सुना ए अजनबी इन द वॉइस ऑफ आदित्य रिखारी एंड कुटले खां, एक कोक स्टूडियो भारत का गाना। किसी भी आर्टिस्ट के लिए गाना एक बहुत बड़ी बात होती है। हर आर्टिस्ट का सपना होता है एक कोक स्टूडियो भारत का गाना करना, एंड आदित्य रिखारी पिछले कुछ ही सालों में वो चोजन पॉप स्टार बन चुके हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट ना, ये स्टार बनने के मायने बदल गए हैं। स्पेशली पॉप म्यूजिक में रिवाइंड करूं, 20 साल पहले आप चूज किए जाते हो, आपकी एल्बम आती है, आपको ब्रेक मिलता है, तब आप फेमस होते हैं। लेकिन अब पहले ऑडियंस आपको देखती है, डिसाइड करती है, आपके साथ एंगेज करती है, तब आपको आपका ब्रेक मिलता है। एंड आदित्य रिखारी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। दिल्ली के एक यंग सिंगर सॉन्ग राइटर लॉकडाउन के दौरान अपने कमरे से अपने गाने अपलोड कर रहे थे, पर उनके गाने ऐसे फॉरवर्ड हो रहे थे, वायरल हो रहे थे हर जगह, बिकॉज वो हमको हमारी ही कहानी सुना रहे थे। एंड देन उनका गाना आया कॉल्ड फासले। इस गाने ने उनको म्यूजिक मैप में पिन कर दिया था, एंड देन केम समझो ना। इस गाने के बारे में तो मैं जितनी बात करूं कम है। इट गॉट अडैप्टेड इन अ कार्तिक आर्यन मूवी, जो एक दिल्ली से आए यंग सिंगर सॉन्ग राइटर के लिए बहुत बड़ी बात है। पर मेरे हिसाब से आदित्य रिखारी का सबसे बड़ा गाना इस साहिबा। उनके जितने कॉन्सर्ट होते हैं, वो जब भी इंटरव्यू करते हैं, आप कहीं चले जाए, एक गाना जो हर फैन उनसे डिमांड करता है कि प्लीज ये वाला गाना गा दीजिए, वो गाने का नाम है साहिबा। तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन आदित्य रिखारीज बेस्ट सॉन्ग दिस इज साहिबा, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

आदित्य ने कहा की कॉम्पोजिशन उन्हीं की आवाज, दैट वॉज साहिबा। दिस सॉन्ग इज अ रिमाइंडर दैट एक अच्छे गाने को किसी बड़ी फिल्म या बड़े हीरो की जरूरत ही नहीं होती है। एंड आई एम प्रिटी श्योर आदित्य रिखारी ऐसे और एग्जाम्पल्स हमको देते जाएंगे। काउंटडाउन में आगे बढ़ते हैं। अगले वाला गाना इज बाय संजू राठौड़, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैंगल्स। 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
1: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्याजी नी पावन उपस्थिति. 732-357-8200. जय गुरुदेव.
3: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
4: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
3: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है.
5: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
8: It's 3:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
9: Ghana Indie Top 10.
10: Kanika ke saath on Mirchi.
11: Number 4.

0: डेविड गेटा का गाना गाने का नाम है रांझा, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। रांझा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आए, मेरे साथ कनेक्ट करी, कोई गाना सजेस्ट करना है बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा फिर सबके दिल को।
0: द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

0: कभी।
1: गाने का नाम है बूंदे बाय द सिल्क रूट। ये गाना 1998 में आया था, सिल्क रूट द बैंड की डेब्यू एल्बम बूंदे का ही पार्ट था। जब ये एल्बम रिलीज हुई थी, सिल्क रूट ने पॉप म्यूजिक स्पेस में अकूस्टिक गिटार, फोक इन्फ्लुएंसेस एंड सॉफ्ट मेलोडी, वेरी पोएट्री फर्स्ट गानों को इंट्रोड्यूस किया था। बैंड के लीड वोकलिस्ट मोहित चौहान, बैंड मेंबर्स अतुल मित्तल, केम त्रिवेदी एंड केनी पुरी, उनकी म्यूजिक आइडेंटिटी किसी फिल्म से कम नहीं थी। उनकी म्यूजिक वीडियोस, द वे देयर म्यूजिक ट्रैवल्ड इज समथिंग जो आज भी हम जानते हैं। इसी एल्बम का पार्ट था डूबा डूबा, जो हर घर तक पहुंच गया। पर उस एल्बम में और बहुत सारे ऐसे जेम्स हैं जिन्हें आपको कभी फुर्सत लेके सुनना चाहिए। एंड अगर आप सच में उनकी म्यूजिकलिटी को जेन्युइनली एंजॉय करना चाहते हो, तो ये वाला गाना बूंदे उसे परफेक्टली डिफाइन करता है। गाने के लिरिक्स प्रसून जोशी ने लिखे थे और उसमें बारिश ना सिर्फ ऐसे मौसम का पार्ट नहीं है, बल्कि बूंदों को यादों से कंपेयर किया गया है, किसी की खुशबू से कंपेयर किया गया है, एक ऐसी प्रेजेंस से कंपेयर किया गया है जो हमारे सामने नहीं है बट आप हर जगह महसूस करते हैं। आज भी जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो प्रोडक्शन में भी आपको 19-20 लग सकता है, बट द इमोशन इज सो फ्रेश एंड शायद इसीलिए ये एक प्रॉपर क्लासिक है। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। सिल्क रूट द बैंड का गाना मोहित चौहान की आवाज में, दिस इज बूंदे, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

मैन व्हाट इज दिस सॉन्ग. ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की मेमोरी में ऐसे फ्लोट कर रही थी. मोहित चौहान की आवाज, सिल्क रूट द बैंड का गाना, दैट वॉज बूंदे ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. Pinch me, Ashkai, because I think this is one of the best picks we've had so far. At RJ Kanak on Instagram par aao, Ashkai, my sound producer, aur main aapki sari suggestions ko bahut seriously lete hain. 90s 2000s ka wo indie pop gana jo aaj bhi aapke liye super special hai, humse aake share kariye. We might feature your song next week. Now back to the countdown, agle wale gaane ki bari. It is again a Diljit Dosanjh song. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप किया ये गाना. गाने का नाम है डीलर. 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. डीलर इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय. नंबर 3.

0: इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
2: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका, एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, लेकिन एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर इस हफ्ते हर्ष नुसी का साडी सुन। उसके बाद अनीश सरकार का उड़ी उड़ी और गाना नंबर 9। एक नई नवेली एंट्री, एश किंग का गाना किनिया सोनी ने डेब्यू किया है और गाना नंबर 8। दिस सॉन्ग इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर बाय द वीक। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
3: कायर जो थे वो शायर बने।
2: उसके बाद आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना, एक और कोक स्टूडियो भारत का गाना ए अजनबी ऑन गाना नंबर 6। संजू राठौर का बैंग गर्ल्स ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ, सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 4। बैक टू बैक बाय दिलजीत, उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डब दबीना। एंड नाउ फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बंजारे का गाना बैरन 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2 एंड द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। मिट्टा रॉर का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन मिट्टा रॉर, स्वरा वर्मा की आवाज में, गाने का नाम है शीशा, वंस अगेन ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैरन ऑन गाना नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 2।

0: चुस्कियों में न सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका वेंसडे की इस खूबसूरत शाम में। वैसे वेंसडे ना एक ऐसा दिन होता है जो यार ज्यादा बोलता नहीं पर सब कुछ समझ जाता है। मतलब मंडे का ड्रामा भी ये देख चुका होता है, फ्राइडे के प्लान भी ये जान लेता है, बस बीच में बैठ कर ना हमारे सारे प्लान को जज कर रहा होता है कि अच्छा बड़े बड़े वादे किए तुमने वीकेंड के, चलो देखते हैं कर भी पाओगे या नहीं। वैसे आज का दिन ना थोड़ा कंपोज, थोड़ा स्मग लगता है, तो यार समझ जाओ वेंसडे अपना काम कर रहा है। आप भी बताओ दोस्तों, आज आप थोड़ी कंपोज थे या कंपोज रहने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे? क्योंकि मुझसे पूछो तो यार मैं बहुत ही ज्यादा कंपोज नहीं थी, लेकिन जब कभी भी शाम को आपके लिए धमाकेदार गाना बजाने का मौका मिलता है तब यार ये पूरी कायनात सारा कंपोजर मेरे लिए लेकर आती है। तो चलिए वही करते हैं, आपके लिए बजाते हैं ये अगला धमाकेदार गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidba la burga. Milci, burga.
2: Hello?
3: Hello? Hello?
2: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही आवाज।
3: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
2: हाँ जी।
3: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
2: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
3: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले ही।
2: मैं
3: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
2: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
3: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
2: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
3: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
2: चोरी करने के लिए
3: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
2: यहाँ पे ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
3: मेरी बात सुन,
2: मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
3: मेरी बात सुन।
2: हेलो
3: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
4: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
2: कहाँ से बोल रहे भैया?
4: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
3: अब ठीक है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
10: రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణ జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
11: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్ నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణ జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
13: इसलिन न्यू जर्सी। Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Alucard's destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on making charges. Shop before 19 July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Esalen, New Jersey, and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNC apply. Joy Alucard's, world's favorite jeweler.
14: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
15: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
15: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन।
12: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
15: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर पता है क्या है? ये हमें हर इमोशन के लिए गाना दे ही देता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और बारिश हो तो अलग प्लेलिस्ट, लॉन्ग ड्राइव हो तो अलग, हार्ट ब्रेक के लिए अलग और सेलिब्रेशन के लिए अलग। और मज़े की बात तो ये है कि कभी कभी हम फीलिंग्स बाद में समझते हैं और बॉलीवुड पहले ही उसके लिए गाना बना चुका होता है। और इसीलिए कुछ सॉन्ग्स ना सिर्फ हिट नहीं होते, वो हमारी लाइफ के माइलस्टोन्स बन जाते हैं। चाहे फिर स्कूल फेयरवेल हो, पहली सैलरी हो, पहला प्यार हो या फिर फैमिली रोड ट्रिप, हर मेमोरी के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड सॉन्ग जरूर बज रहा होता है। तो दोस्तों, आज का सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपकी लाइफ पर फिल्म बने तो उसका टाइटल ट्रैक कौन सा बॉलीवुड गाना होगा? DM ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए देखते हैं कि आज का अगला गाना किसकी कहानी का बैकग्राउंड म्यूजिक बनने वाला है। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुरा कर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, the king of mortgage industry.
6: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
2: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
10: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
9: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
10: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
11: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Tickets 4:30 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. Sham Shanda. Let's do not
1: donkey, have a funky time. अगर फलों में किसी को अवार्ड देना हो ना तो इस एक फ्रूट को जरूर मिलना चाहिए। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सोचिए ना, जहाँ इतने सारे फल हैं, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, वह हर इंसान का दोस्त अगर कोई एक फ्रूट है तो वो है बनाना। अब जाहिर सी बात है, बनाना हर स्टोर में ईजिली अवेलेबल होता है, ज्यादा महंगा भी नहीं होता, कुछ नखरे नहीं, जैसे कि ना काटना पड़ता है ऑरेंज की तरह, ना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अनार की तरह, बस उठा लो, पील करो और खा लो। और अगर ऐसे सीधा साधा नहीं पसंद तो स्मूदी बना लो, डेजर्ट बना लो, या मेरे फेवरेट डीप लॉन्ग बनाना चिप्स फॉर्म में खा लो। और एक नहीं, उसमें भी तीन तीन वैरायटी, प्लेन चिप्स, ब्लैक पेपर चिप्स एंड रेड चिली चिप्स। तो हर फॉर्म में आपको मिलेगा 100% नेचुरल क्रिस्पी बनाना चिप। और अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो अपने नजदीकी इंडियन स्टोर से ले आइए हेल्दी एंड क्रिस्पी डीप बनाना चिप्स। और मुझे जरूर बताइए कि आपको बनाना का ये अंदाज पसंद आया या नहीं। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कभी कभी लाइफ के छोटे मोमेंट्स ही ना सबसे फिल्मी होते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जैसे कि कार में बैठते ही अचानक से तुमसे ही बच जाए, या फिर ड्राइव के वक्त यूं ही चला चल रहा ही लग जाए, बस वो मोमेंट ही काफी होता है पूरा मूड चेंज करने के लिए। क्योंकि यार बॉलीवुड हमें यही तो सिखाता है, हर दिन में एक छोटा सा सीन ऐसा जरूर होता है, बस उसे नोटिस करना पड़ता है। तो आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, आपके दिन का ऐसा कौन सा मोमेंट था जो थोड़ा सा फिल्मी था? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल मेरे दिल के फिल्मी मोमेंट के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do Nautanki, have a funky time.
2: दोस्तों, बॉलीवुड का लैंडस्केप ना धीरे धीरे चेंज हो रहा है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और पहले ना एक फॉर्मूला होता था, बिग स्टार, बिग सॉन्ग्स, बिग रिलीज। आज ना इंडस्ट्री थोड़ा ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो चुकी है, क्योंकि एक्टर्स भी डिफरेंट कैरेक्टर्स ट्राई कर रहे हैं और डायरेक्टर्स भी यूनिक स्टोरीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई है, तो सिर्फ ग्लैमर नहीं, कॉन्टेंट भी डिमांड करती है। और शायद इसी वजह से कुछ फिल्म थिएटर में धमाका करती है और कुछ ओटीटी पे कल्ट फॉलोइंग बना लेती है। यार, ये इंटरेस्टिंग फेज है जहां बॉलीवुड एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मल्टीपल लेन्स में ग्रो हो रहा है। और सच कहूं तो जब इंडस्ट्री एक्सपेरिमेंट करती है ना, तभी आइकॉनिक सिनेमा पैदा होता है। तो आप भी बताना, आप कौन सी टाइप की फिल्म ज्यादा पसंद करते हो? टेल मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
2: वेरी फाइन, थैंक यू।
3: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
2: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा।
3: हाँ, नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
2: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
3: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
2: गेम है क्या?
3: आओ मिलो शिलो शालो,
2: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
3: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट,
2: पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
3: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
2: आओ मिलो
3: शिलो शालो,
2: शालो
3: कच्चा धागा,
2: कच्चा धागा
3: रेस लगा लो,
2: रेस लगा लो,
3: दस पत्ते तोड़े,
2: दस पत्ते तोड़े,
3: एक पत्ता कच्चा,
2: एक पत्ता कच्चा।
3: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे, दस पत्ते तोड़े
2: तोड़े।
3: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
2: दस दस दस पत्ते तोड़े।
3: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा।
2: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा।
3: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
3: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
2: मिस्टर
3: श्रीवास्तव। बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
2: यार ये कुछ सुनेगा
3: सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं। अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक।
9: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
10: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
12: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
11: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
13: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
13: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
18: कत्ल करती है निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: की टाइम। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और चलिए आज की शाम में करते हैं थोड़ा रियल टॉक। जी हाँ यार, आजकल मार्केट ना हर वीक चेंज हो ही जा रहा है, कभी रेट्स ऊपर कभी नीचे, कभी सेंटिमेंट ही फ्लिप तो कभी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा कि यार ड्राइव टाइम भी ना थोड़ा सा दर्द दे रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, बल्कि ये होता है कि यार मेरा बजट क्या क्या अलाउ कर सकता है। स्पेशली अगर होम बाइंग के बारे में बात करूँ ना, तो स्मार्ट होम बाइंग ट्रेंड फॉलो करने से नहीं बल्कि नंबर्स को ढंग से समझने से होती है कि आप कितना कंफर्टेबली कोई भी नया घर अफोर्ड कर सकते हो और किस तरह प्लान कर सकते हो, स्पेशली ऐसे चेंजिंग सिचुएशन में भी। और इसी क्लैरिटी के लिए एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आए हैं मेरे दोस्त बीच फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। तो चलिए ऐसे डायनामिक मार्केट में बजट को कैसे स्मार्टली प्लान करें, सुनते हैं बीच से। ओवर टू यू बीच।
1: गुड इवनिंग मेरे लिसनर्स, योर फ्रेंड बीच फ्रॉम लैंड मॉर्गेज, giving you mortgage rate updates during this drive time. Today, temperatures are going to be in the upper 90s and the US markets are mixed and the rates get better. Land Mortgage, with an experienced staff offering expertise in every area of mortgage lending, from purchase to refinance, we have access to a full range of mortgage source. But more important, we provide a kind of advice that will put your mind at ease, because all our experts are dedicated to finding the right loan with the best rates, terms, and cost to meet your unique need. But that's just the beginning of our service. Throughout the lending process, we provide you regular loan updates and progress reports, so you always know the status of your loan. So buying your dream home, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.25%. 20-year fixed mortgage rate, 6.125%. 15-year fixed mortgage rate, 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And it is lionmtg.com. Remember, listeners, debt consolidation is another goal of refinancing. If you have both a first mortgage and a home equity mortgage, combining the two mortgages into one fixed rate is also considered as a refinance option. And don't forget to ask us about our zero closing cost refinance option. Lion Mortgage offers conventional loans, FHA loans, great rates on jumbo loans. We also offer DSCR loans and bank statement loans. So for all your mortgage needs, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: starts 5:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's go not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहां इतने सारे गाने बनते हैं, कुछ हिट होते हैं, कुछ फ्लॉप होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसका हर एक गाना दिल को छू जाता है। और 2008 की रिलीज दोस्ताना का एल्बम, ओ हो हो, इट वॉज वन दैट एल्बम जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक था। विशाल शेखर कंपोज, जिसके सारे गाने इतने अमेजिंग थे, लेकिन जब दोस्ताना रिलीज हुई थी और टीवी पे ये गाना रिलीज हुआ था तो माय गॉड, माइंड ब्लो हो गया था। जी हाँ, मतलब नॉर्मली ऐसे टीवी पे नॉर्मल कलर्स दिखते हैं, लेकिन सडनली एक दिन ब्लू पानी दिखने लगा। उसमें जॉन अब्राहम अपनी अमेजिंग सी स्माइल लेकर मायामी बीच पे दिखाई दिए विद शिल्पा शेट्टी डूइंग शट अप एंड बाउंस। माय गॉड, दैट सॉन्ग नॉट जस्ट ब्लू माय माइंड विजुअली बट ऑल्सो ब्लू माय माइंड म्यूजिकली, क्योंकि सुनिधि चौहान की आवाज और अमेजिंग सा ये गाना मायामी बीच पर शॉट, कि जब मायामी जाओ तो ये गाना दिमाग में प्ले ना हो, बैकग्राउंड में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज बातें करते हैं दोस्ताना के एल्बम के बारे में, एंड स्टार्टिंग विद दिस वन सॉन्ग शट अप एंड बाउंस राइट हियर ऑन मिर्ची। तो आपके लिए मैं बजाने वाली हूँ शट अप एंड बाउंस, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बिकॉज इट्स गोना बी शट अप एंड बाउंस बाय सुनिधि राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

की टाइम एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और 2008 में एक ऐसा ही एल्बम बना था जिसका यार हर एक गाना एक से बढ़कर एक था। बात हो रही है दोस्ताना मूवी की, या जिसका म्यूजिक दिया था विशाल और शेखर ने और जिसको प्रोड्यूस किया था हमारे करण जौहर ने। वैसे तो यार शराब एंड बाउंस इस मूवी का सबसे ज्यादा फेमस गाना था, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मायामी जा रहे हो और जॉन को इमेजिन ना करो, शिल्पा शेट्टी को इमेजिन ना करो और ये गाना बैकग्राउंड में प्ले ना करो। लेकिन और एक गाना है इस मूवी का जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही फन है, एंड दैट इज माँ दा लाडला बिगड़ गया। मतलब माँ को अगर डायरेक्टली आपको डांटना नहीं है तो आजकल माएँ माँ दा लाडला बिगड़ गया ही कह देती है। और जिस तरह से किरण खेर ने चिल्ला कर जोर से कह दिया था हाय रब्बा मैनू चख ले यार, उस वजह से वो लाइंस एक्चुअली गाने में थी ही नहीं, लेकिन वो इतने फीलिंग्स के साथ बोली गई थी कि विशाल जेकर ने डिसाइड किया कि ये जो पैच है ये हम गाने में एक्चुअल गाने में भी यूज करेंगे। तो इसलिए बीच बीच में आपको किरण खेर की आवाज भी आएगी कि हाय रब्बा मैनू चख ले। बस माँ के जो फीलिंग्स है उसे विशाल शेखर जैसे कंपोजर्स भी बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर पाए, उन्होंने उनका पैच उस गाने में रखा और कहीं ना कहीं उसी वजह से ये गाना हिट हुआ है। तो चलिए सुनते हैं माँ दा लाडला बिगड़ गया फ्रॉम दोस्ताना। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस मूवी। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए माँ दा लाडला राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do Nautanki, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बना था और बिल्कुल बना था। 2008 में एक ऐसा एल्बम बना था दोस्ताना, जिसका यार हर एक गाना दिल को छू गया था। एंड वन ऑफ द मोस्ट पार्टी सॉन्ग्स जो इसी मूवी से, इसी म्यूजिक एल्बम से निकला है, That is a Desi Girl, sung by Shankar Mahadevan, Sunidhi Chauhan and Vishal Dadlani. ये पूरा का पूरा एल्बम ही वैसे तो यार विशाल शेखर ने बनाया है, लेकिन ये जो गाना है वो काफी खास है, क्योंकि इस गाने ने ना प्रियंका चोपड़ा को एक आइडेंटिटी दी। जी हाँ, मतलब प्रियंका

का चोपड़ा वैसे तो इस मूवी में लहरों में एंट्री मारते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इस गाने के बाद देसी गर्ल हर शादी का एक एंथम ही बन गया। और हमें भी कहाँ पता था कि प्रियंका भी इंटरनेशनल हो जाएगी और उनकी एक आइडेंटिटी ही बन जाएगी, देसी गर्ल। तो जी हाँ, देसी गर्ल वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम। वैसे तो हम शट अप एंड बाउंस के बारे में बात कर चुके हैं और आप मादा लाला तो सुन ही चुके हो, तो चलिए आपके लिए बजाते हैं देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Milchi, burga.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू कोमल प्लीज?
2: स्पीकिंग.
3: कोमल, हाय, आई एम रवि. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
2: लगता क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
3: ओके.
2: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर
3: हैं.
2: इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है.
3: इनफैक्ट
2: मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
3: ओके.
2: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी.
3: हाँ.
2: तो वहाँ मुझे छेड़ा.
3: कितने बजे गई थी आप?
2: से 10:30 बजे.
3: 10:30 बजे क्यों गई थी आप? 10:30 बजे
2: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
3: किस तरह का काम पड़ गया था आपको 10:30 बजे, जो आपको इतनी हबड़ तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
2: मुझे बड़ी जरूरी काम
3: नहीं था. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेके कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई 10:30 बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
2: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो.
3: नहीं, गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे 10:30 बजे?
2: ये खुद गुस्से में हो.
3: खुद गुस्से में आप क्यों गई 10:30 बजे?
2: आप हद से ज्यादा ईव टीजिंग
3: क्या बात कर रहे हैं?
2: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं.
3: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ? आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
2: नहीं कर सकते आप.
3: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा हो, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
2: की सुरक्षा की बात करें.
3: किस तरह की? नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? 10:30 बजे क्यों गई आप? साकेत फोन रखिए आप, बेकार की बात. हेलो.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल, हाय, हम ई टीजिंग को लेकर.
2: ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके
3: मेरी बात सुनिए. कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहीं थी 10:30 बजे?
2: मिस्टर, ये आप हैं
3: जी. मैं
2: आपको गुस्सा दिलाया, किसी दिन आपको पकड़ के ना ठीक करना पड़ेगा.
3: चलिए, मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
2: ओके, कुकड़ू कू.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
8: Oak Tree Road लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर.
9: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स. कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, ईसलिन.
10: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
12: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन. प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
13: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
14: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा.
15: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
14: Only on 92.3.
16: 102.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's

0: शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका इस गोल्डन आवर में। दोस्तों देखिए, समर तो शुरू हो चुका है और समर जब भी शुरू होता है ऐसे एक मतलब एक ऐसी एक सेगमेंट होती है लोगों की जिनको मन करता है कि बस अभी तो टाइम है कि शॉपिंग करनी है, क्योंकि यार समर वो एक ऐसा मौका होता है जब लोग बाहर निकलते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, शादियों का सीजन होता है और ऐसे में नई नई चीज़ें मार्केट में क्या आई है ये बताने के लिए हमारे पास जो एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आते हैं बॉबी जी, उनसे बेहतर और कौन हो सकता है। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि समर ट्रेंड्स क्या है फिलहाल गोल्ड मार्केट में। तो नमस्ते बॉबी जी, स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में।
1: नमस्कार नमस्कार सिद्धि जी, हैप्पी इवनिंग टू यू। और बता दूं आपको सिद्धि जी, गोल्ड के प्राइस 4060 $4,060 पर ट्राई ऑन स्ट्रीट कर रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: गोल्ड पिछले हफ्ते से मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड पर है। सर्कल जो है ना पूरा गोल गोल गोल गोल घूम रहा है। आप हिंट समझ रहे हैं मेरा?
0: बिल्कुल
1: गोल गोल गोल सर्कल में,
0: बिल्कुल जलेबी की तरह
1: जैसा, बिल्कुल जलेबी की तरह। और देखिए, दुनिया बड़ी त्राही त्राही से, कोई इस चीज से खुश नहीं है, कोई इस जंग से परेशान है, कोई गोल्ड के प्राइस से परेशान है। इन सब चीजों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आइए अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें। वी एवरी डे दैट वी वेक अप वी थैंक गॉड फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल लाइफ एंड हैप्पी लाइफ हैप्पी वाइफ हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। सिद्धि जी ये भी आपने सुना होगा। सो मुझे लगता है कि आप अपनी बीवी के लिए खूबसूरत डिजाइनर जलेबी नेकलेसेस विद कुंदन एंड विद कलर स्टोन्स राज ज्वेल्स की डिजाइनर कलेक्शन में रेडी हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ठीक है, दुनिया में हर जगह पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, लेकिन हमारे घर की जो सेलिब्रेशन है वो भी रुक नहीं रही। सो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए $4,060 पर ट्राई ऑन्स में राज ज्वेल्स के साथ जलेबी कलेक्शन देखने के लिए कि किस तरह से आप जलेबी का वो खूबसूरत नेकलेस और जलेबी की बैंगल्स घर ले जा सकते हैं 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ। आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 9 इंस्टॉलमेंट में आइए। सिद्धि जी मैं आपको भी इन्वाइट करता हूँ। देखिए बहुत सारे दोस्त फाफड़ा जलेबी भी खाते हैं, लेकिन जलेबी के नेकलेसेस आपने भी नहीं देखे होंगे। तो आज जो उसके साथ जलेबी के नेकलेसेस देखने के लिए और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए राज उसकी टीम के साथ। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
0: थैंक यू बॉबी जी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि बॉबी जी ने कहा कि जलेबी सिर्फ खुशी नहीं लाता है, मतलब एक सिर्फ मिठाई ही नहीं है, एक नया ट्रेंड भी शुरू हो चुका है इन गोल्ड ज्वेलरी। तो अगर आपको चेकआउट करने हैं जलेबी सेट्स, आज ही विजिट कीजिए rajjewels.com। और तब तक के लिए ये मीठा सा गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Inefficient,
3: very complex,
4: clumsy or
5: confusion ही confusion.
2: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
12: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
13: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
12: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
13: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा.
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: at 6:30 PM. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price. Sham Shandar, let's do
1: non-donkey, have a funky time. शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में, जहां हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे खास एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना अमेजिंग है। जी हां, बात हो रही है 2008 में रिलीज दोस्ताना मूवी की, जिसके जो गाने हैं वो कम्पोज किए हैं विशाल शेखर ने। और क्या कम्पोज किए, मतलब एक से बढ़कर एक गाना है इस एल्बम में। और वैसे तो हम इतने सारे गाने प्ले कर चुके हैं, लेकिन एक सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है रौनक पटेल से, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। उन्होंने कहा है कि यार जब भी कोई ट्रिप जाती है और दोस्त साथ में होते हैं तो ये गाना तो हमेशा बजता ही है उस ट्रिप में फ्रॉम दिस मूवी, क्योंकि ये गाने का एक टैगलाइन है, तू है तो आई विल बी ऑल राइट। और हर बार दोस्तों के साथ यही फील होता है कि भाई तू है ना तो आई विल बी ऑल राइट। तो जी यार, चलिए इसी फीलिंग के साथ रौनक पटेल की रिक्वेस्ट पर ये गाना बजाते हैं फ्रॉम द मूवी दोस्ताना, विच इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एल्बम्स। तो दोस्तों आप भी मुझे बताइए ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार बजाते हैं ना उसके सारे गाने यहाँ पर और कहाँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
1: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है.
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है.
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में यार जिसका हर एक गाना धमाकेदार है, दिल को छू जाने वाला है। जी हाँ, 2008 की रिलीज दोस्ताना मूवी जिसे प्रोड्यूस किया था करण जौहर ने और जिसका म्यूजिक कंपोज किया था विशाल शेखर ने, यार क्या एल्बम बनाया, हर एक गाना दिल को छू जाने वाला था। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आपसे आई है, दैट रिक्वेस्ट इज फ्रॉम प्रियंका। और प्रियंका कहती है, वैसे प्रियंका रहती है जर्सी सिटी में लेकिन वो फिलहाल विजिट कर रही है एडिसन, अपने यू नो पार्टनर से मिलने आई है। और जब भी वो लोग डेट नाइट्स पर जाते हैं तब ये गाना बहुत बार वो अपने प्लेलिस्ट में बजाते हैं, एंड दैट इज खबर नहीं इट्स एन आयरनी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डेट पे कहाँ जाना है यही हमको खबर नहीं होती। लेकिन ये जो गाना है श्रेया घोषाल की आवाज़ में, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, तो श्रेया घोषाल एंड शान की आवाज़ में। तो चलिए आज प्रियंका के लिए ये गाना प्ले करते हैं, आयरॉनिकली उनका नाम भी प्रियंका है एंड शी इज़ गोना लव दिस सॉन्ग। तो चलिए आज प्रियंका के लिए खबर नहीं प्ले करते हैं, लेकिन आप भी दोस्तों मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट वन एल्बम जिसका हर एक गाना बहुत अमेजिंग है और आप कभी स्किप नहीं कर पाते हो। टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा तो काम ही है आपके लिए वो गाने प्ले करना राइट हियर ऑन मिर्ची। और कहाँ, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do Nautanki, have a funky time.
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हंगामा आ रहा है ट्रेन की छत से। जी हाँ, छैया छैया यार, ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। इसमें SRK है, मलाइका है और हवाएं हैं, स्वैग है, तो लगता है कि बस डांस करो और हिट हो जाओ। पर यार पर्दे के पीछे का सीन ना लिटरली बैलेंस का एग्जाम था। मलाइका जी ने बताया था कि ट्रेन के ऊपर हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि कभी वो दाएं कभी बाएं तरफ स्वे कर रही थी, तो टीम ने ना उन्हें रोप से ट्रेन के साथ टाई कर दिया था ताकि सिंक भी रहे और सेफ्टी भी। और जब वो रोप निकाला गया, वेस्ट पे ना उनके काफी सारे कट्स आ गए थे और सेट पे सब परेशान हो गए थे, सारे पैनिक मोड में आ गए थे कि यार मलाइका जी ठीक तो है ना। मतलब सोचिए, ट्रेन के ऊपर छैया छैया करना इतना आसान भी नहीं था। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना हिट सॉन्ग कभी कभी पहले सर्वाइवल सॉन्ग बन जाता है और बाद में हिट बन जाता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किससे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Gambana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello?
3: Hello? Hello?
2: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही आवाज।
3: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
2: हाँ जी।
3: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
2: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज करेगी यार।
3: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार, आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले ही।
2: मैं
3: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
2: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
3: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
2: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
3: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
2: चोरी करने ले गया,
3: तुमने पहले क्यों नहीं
2: बताया? यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
3: मेरी बात सुन,
2: माँ का तू मुझे मरवाएगा। कल तुझे मुझे फोन कर दिया,
3: मेरी बात सुन।
2: हेलो
3: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
4: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
2: कहाँ से बोल रहे भैया?
4: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
3: अब ठीक है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
10: I am not going to bed with you ever again.
9: But why? What did I do?
10: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
9: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
10: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
9: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
10: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
9: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
12: जय गुरुदेव, गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिव जी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
16: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
15: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
16: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Iselin. We'll be right back.

पहले बॉलीवुड में सिर्फ फ्राइडे का वेट होता था, लेकिन अब तो ट्रेलर रिलीज भी एक मिनी इवेंट बन चुका है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आजकल किसी फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया ना दो टीम्स में डिवाइड हो जाती है। एक टीम कहती है कि मुझे तो यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना है, और दूसरी टीम कहती है कि नहीं नहीं पहले रिव्यूज आने दो। और मुझे ना इस जनरेशन की एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है कि पहले हम सिर्फ फिल्म देखते थे, लेकिन आज हम ट्रेलर ब्रेक डाउन देखते हैं, फैन थियोरीज पढ़ते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक नोटिस करते हैं, और टीजर के एक फ्रेम पर भी डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सिर्फ मूवीज नहीं कॉन्वर्जेशंस भी क्रिएट करता है। वैसे आप ही बताइए दोस्तों कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ट्रेलर देखते ही टिकट बुक करने वाले या पहले आप रिव्यू सुनते हो? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए अब ट्रेलर से सीधा पिक्चर की दुनिया में चलते हैं एक जबरदस्त बॉलीवुड के गाने के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: at 7:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक बात तो माननी पड़ेगी कि न्यू जर्सी की समर ना घर में बैठने के लिए बनी ही नहीं है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही होती है, फिर चाहे फार्मर्स मार्केट हो, फूड फेस्टिवल्स हो, बीच ट्रिप्स, इवनिंग वॉक्स, कॉन्सर्ट्स, काउंटी फेयर्स, या बस मौसम को देखते रहना। वैसे यार आजकल ना मन करता है कि घर थोड़ा लेट ही चलता है, क्योंकि समर की सबसे प्यारी बात ही ये होती है कि प्लान्स ना बहुत बड़े होने की जरूरत नहीं। कभी एक आइसक्रीम, कभी एक की वॉक, कभी बस कार की विंडोज डाउन करके बॉलीवुड सुनते हुए ड्राइव, और शाम यादगार बन ही जाती है। तो इस हफ्ते न्यू जर्सी चैलेंज ये है कि एक नई जगह जरूर एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आपके पास कोई हिडन जेम हो, फिर चाहे वो कॉफी शॉप, पार्क या सनसेट स्पॉट हो, तो मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और चलिए न्यू जर्सी की इस खूबसूरत समर इवनिंग को बॉलीवुड के सुरों से और भी रंगीन बनाते हैं विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

माइंडेड। अरे मेरी जैसे डांस किसको आते, कोरियोग्राफर को मैं ही सिखा दे, वो घर पे आते

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
6: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
2: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
7: अब मिर्ची खा.
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विद नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Love is the message, eh?